एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं हिंदी समाचार सुनने के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला

0: विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि

0: इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध में हजार शब्द बोलने से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन। लीजिए वंदनवार में आपको सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं।

यह है विविध भारती। झरोखा में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 260, 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन। इस कार्यक्रम का 5वां भाग आज आप सुनेंगे, समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से, हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक सुबह 8:30 और रात 8:00।

15 मिनट से। नौ बजकर 30 मिनट से आज के फनकार केंद्रित होगा संगीतकार जीएस कोहली पर। आलेख व स्वर यूनुस खान। दस बजे पिटारा में सुनिएगा गीतों भरी कहानी। जिंदगी की यही रीत है। लेखिका रिद्धि चौरडिया। वाचन संपादन नेहा शर्मा।

11 बजे से चित्रपट संगीत। ग्यारह बजकर 30 मिनट से मैटिनी शो, जल है तो कल है। पर्यावरण विशेषज्ञ शुभजीत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। आज होगा इसका दूसरा भाग। एक बजे से सुरीला सफर, दो बजकर 30 मिनट से सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे से लेकर आएंगे मनचाहे गीत। दिन में 3 बजकर 30 मिनट से नाट्य तरंग में नाटक वो मंजिल कहां, लेखक डॉक्टर रणवीर सक्सेना, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। चार बजे से पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज। फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने, छह बजकर 35 मिनट से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से विशेष जयमाला पार्श्व गायक अनूप जलोटा द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। सात बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा सुनो कहानी पीसनहारी का कुआं। इस कहानी का पहला भाग आज आप सुनेंगे। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे। रात 9 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे 10 बजे से छाया गीत और 10 बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 260।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: घुंघरू की तरह। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति मुझे याद आती है, एक पंक्ति मतलब कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है।
2: वाह,
1: शेक्सपियर ने भी कहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज पोएट्री। प्यारे दोस्तों, रविंद्र जैन साहब का गायन पक्ष और संगीत निर्देशन का पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही सशक्त है उनका लेखन। दादा, एक बहुत अच्छे दर्जे के साहित्यिक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार हैं। इनकी प्रतिभा में कई बातें जुड़ गई हैं। चूंकि दादा लिख नहीं पाते हैं, दृष्टि मंद है, फिर भी ईश्वर ने इनको इतनी संपदाओं और प्रतिभाओं से नवाजा है कि ये स्पॉन्टेनियस, वहीं के वहीं तुरंत वातावरण और माहौल को महसूस करके कविता कह देते हैं। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं। और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि आज की श्रेणी के कवियों में रविंद्र जैन साहब कवि के रूप में बहुत ऊंचे हैं। आपके लेखन के बारे में आपके अनुभव के साथ कुछ जानना चाहते हैं।
2: मुझे साहित्यिक मेरी अभिरुचि बहुत, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ से ही है
1: जी।
2: लिख कितना पाया हूँ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सुना बहुत अच्छा अच्छा है। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे लोगों ने रचनाएं की हैं कि बस आदमी पढ़ता रहे। मैं ये मानता हूँ उम्र बहुत कम है ऐसी कलाओं को, ललित कलाओं के लिए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, सुन लें, वही हमारी उपलब्धि है। मैं थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो, जैसा कि आपसे बताया, अलीगढ़, एक तो उसकी उसमें फाउंडेशन में अलीगढ़ मौजूद है, फिर कलकत्ते गया, टैगोर का उनको पढ़ा सुना, बहुत
1: साहित्य पढ़ा टैगोर
2: जी, बहुत अच्छे अच्छे वो तो क्या कहें, लाजवाब लोग हैं। आज आप कविता के किसी मोड़ पे खड़े हो जाइए, गुरुदेव आपको वहाँ मिलेंगे।
1: शिलालेख हैं वो लोग,
2: शिलालेख
1: बिल्कुल।
2: फिर वहाँ के कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम और डीएल राय, बड़े बड़े बड़े विशेष लोग,
1: कमाल के लोग हैं ये।
2: जी जी, तो उन वहाँ से मैं मुझे जो गढ़ा गया है, उन सब चीज़ों ने गढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज हम जो कुछ कहें, कम से कम ऐसा कहें कि उन लोगों को शर्मिंदगी ना हो, उनसे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको शर्मसार ना होना पड़े। हमारे बुजुर्गों
1: को अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि आपकी सृजन की हुई कुछ रचनाएं हम अपने श्रोताओं को सुनाएं।
2: अच्छा,
1: और आपके काव्यात्मक हुनर का भी दर्शन करें।
2: फिल्म में तो आपने महसूस किया कि मैंने हमेशा उन गीतों की ऊंचाई देना चाहिए है, ऐसे लफ्ज लाया हूँ, संकेत है और इस तरह के, जल जो जल न होता तो ये जग जाता जल,
1: जी जी,
2: अलंकारों का प्रयोग है, सजना है मुझे सजना के लिए।
1: और बल्कि मैं यह यूं कहूंगा कि आपने फिल्म और साहित्य को बहुत नजदीक लाने की कोशिश की है, जिसमें आप सफल हुए हैं। तो कुछ अपनी रचनाएं आप दादा,
2: मैं आपको सुनाता हूं। एक पीछे एक मेरी किताब शाया हुई थी गजलों की
1: जी,
2: उजालों का सिलसिला, उसमें से एक गजल के दो तीन शेर आपको सुना रहा हूं।
1: इरशाद।
2: उफ ये सफर तवील, ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील, ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील, ये छालों का सिलसिला, उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला।
1: क्या बात है, वाह वाह,
2: उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला। हम ही ना अपनी कैद से बाहर निकल सके,
1: क्या बात है,
2: वरना कहाँ नहीं है उजालों का सिलसिला।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: वरना कहाँ नहीं है
1: उजालों का
2: सिलसिला। इंसान को सारी उम्र फिर आता है दर बदर, दो रोटियों का चारने वालों का सिलसिला।
1: क्या कहने, इसमें तो आपने पूरा दर्शन डाल के रख दिया दादा। वाह,
2: इसमें बहुत सारी गजलें हैं, नज़में हैं,
1: कुछ और इरशाद करें।
2: एक हिंदी की कुछ रचनाओं का संकलन
1: स्वागत है
2: अभी निकालना चाह रहा हूँ, उसमें से एक गीत आपको सुना रहा हूँ। और उस गीत की विशेषता यह है कि वो गीत मैंने, मेरी जीवन संगीनी दिव्या जो है वो इसी गीत से प्रभावित होकर जीवन में आई, सौदागर के की रिलीज पे मुझे मिली थी, लेकिन उसके मुझे मेरा साहित्यिक पक्ष उसको बहुत पसंद था।

0: दादा, आपके इतने सुंदर गायन और इतनी सुंदर शब्द रचना से ऐसा लगता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर कहीं ना कहीं है जिसने आप जैसा प्रतिभा संपन्न कलाकार इस धरती पर उतारा। अच्छा, आपके लेखन के सफर में आगे चल रहे हैं तो आपने बहुत सी सांकेतिक भाषाएं और तुलनात्मक भाषाएं और अलंकार बहुत इस्तेमाल किए अपने गीतों में, जिससे संगीत का यानी फिल्मी संगीत का स्तर बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। कुछ ऐसे गीतों के बारे में जानकारी दें जिसमें आपने कई उपमाएं और कई अलंकार इस्तेमाल किए हैं और कॉमर्शियली भी वो गाने बहुत हिट हुए हैं।
1: सबसे पहले वो सौदागर में आशा जी का गाया हुआ गीत सजना है मुझे सजना के लिए।
0: वाह वाह वाह, क्या उपमा है।
1: एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। भूषण जो वीरस के कवि हैं, आपने उनको जरूर पढ़ा होगा।
0: जी जी।
1: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
0: वाह वाह।
1: तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती है। तो इसी तरह का प्रयोग इस गीत में है।

0: आशा जी बहुत वर्स्ट स्टार आर्टिस्ट हैं, हर तरह के गीत की गाने की आशा उनसे की जा सकती है। इसी तरह वो गीत गाता चल में यह है ना अपना उसका टाइटल सॉन्ग
1: गीत गाता
0: जल जो ना होता तो ये जग जाता जल।
1: वाह वाह वाह,
0: एक शब्द के दो अर्थ
1: निकलते हैं।
2: चांदी

0: जब कोई गीतकार संगीतकार बनता है और जब कोई संगीतकार गीतकार बनता है तो वो रविंद्र जैन बन जाता है। दादा, आपके गीतों में, गीतों की पंक्तियों में शब्दों का इतना अच्छा फैलाव है, इतने अच्छे अर्थ हैं, गेयता के साथ साथ उनमें आध्यात्म भी स्वयं चला आता है जो आपके एक नहीं अनेक गीतों से जाहिर होता है। संगीत सरिता के प्यारे श्रोताओं, आज की इस कड़ी का सफर यहां समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में रविंद्र जैन साहब के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली

शिकारी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। फारूक कैसर ने इसे लिखा, जीएस कोहली का संगीत। फारूक कैसर ने इसे लिखा, जीएस कोहली का संगीत।

द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिनहुड इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, जीएस कोहली का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

पैगाम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में। हसन कमल ने इसे लिखा था। आज संगीतकार जीएस कोहली की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत में हमने आपको सुनवाए जीएस कोहली द्वारा संगीतबद्ध गीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: भाभी की चूड़ियां, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मुकेश की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मैंने नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा और सुधीर फड़के का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज़ अहमद का नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। कभी किसी से ईर्ष्या न करें, क्रोध न करें, वरना मन हमेशा अशांत रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत है वह सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। गौतम बुद्ध के शब्द।

अब आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। श्रोताओं, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार आज यानी 25 जुलाई वर्ष का 206वां दिन है और लीप ईयर की यदि बात करें तो वर्ष का 207वां दिन यानी साल 2026 में अभी 159 दिन बाकी हैं।

आज यानी 25 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आइए ध्यान देते हैं। आज ही के दिन यानी 1978 को ओल्डहम ब्रिटेन में प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था। 25 जुलाई 1994 को चंद्रमा पर मानव पदार्पण की रजत जयंती मनाई गई थी और आज ही के दिन 2001 ईस्वी में इंडोनेशिया के नए उपराष्ट्रपति हमजा हज बने थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी।

अब नज़र डालते हैं आज के दिन महान व्यक्तियों के जन्म पर। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह का जन्म आज ही के दिन यानी 25 जुलाई सन 2020 ईस्वी को हुआ था। आज ही के दिन 1929 ईस्वी में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सोमनाथ चटर्जी का भी जन्म हुआ था। भारतीय समाजशास्त्री एवं साहित्यकार श्याम चरण दुबे का जन्म भी आज ही के दिन यानी 25 जुलाई 1922 ईस्वी को हुआ था। विद्वान शोधकर्ता परशुराम चतुर्वेदी का जन्म भी 1894 ईस्वी को आज ही के दिन हुआ था।

अब नज़र डालते हैं उन महान व्यक्तियों पर जो हमसे आज के दिन अलविदा कह गए यानी रुखसत हो गए। सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का निधन आज ही के दिन 1880 ईस्वी में हुआ था। उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं साहित्यकार गोदावरीश मिश्रा का निधन भी आज ही के दिन यानी 25 जुलाई 1956 ईस्वी को हुआ था। और भारतीय यांत्रिक इंजीनियर मनमोहन सूरी का निधन भी 1981 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निदेशक बी.आर. इशारा आज ही के दिन 2012 ईस्वी में हमसे गुजर गए थे यानी अलविदा कह गए थे।

यदि उत्सव की बात करें तो आज ही के दिन यानी 25 जुलाई को राष्ट्रीय हॉट फज संडे दिवस है, जो अमेरिका में भोजन से संबंधित लोकप्रिय उत्सव है।

अब नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास श्री रोशन कुमार ने छात्रों एवं युवाओं के साथ संवाद किया। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य, करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा जीवन के लक्ष्यों पर विचार से चर्चा की और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में लक्ष्य होना अत्यंत जरूरी है, बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में परिवर्तन रातों रात नहीं आता, बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन, धैर्य और सही दिशा में किए गए प्रयासों से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने छात्रों से कहा कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास श्री रोशन कुमार द्वारा अनुमंडल कार्यालय विक्रमगंज में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र की विधि व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सतर्कता बरतने तथा किसी भी स्थिति से त्वरित एवं प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों को असामाजिक एवं अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नज़र रखने, नियमित गश्ती बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं की सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दिया। साथ ही आम जन से शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी दोनों पदाधिकारियों द्वारा की गई। अब आइए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म लैला, माफ़ कीजिएगा, जिसे हमने लिया है फिल्म लैला मजनू से। इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार मदन मोहन। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की।

श्रोताओं, अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पूर्वानुमान पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज वर्षा 65 मिलीमीटर बताई गई है। यदि तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता की अगर बात करें तो 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 40%। हवा की गति प्रति घंटा किलोमीटर अगर बात करें तो 15 बताई गई है और पवन की दिशा 100 डिग्री। क्लाउड कवर की अगर बात करें तो 7 ऑक्टा और मौसम विभाग के द्वारा कुछ चेतावनी भी दी गई है, जैसे भारी वर्षा, आंधी और बिजली, तूफान आदि आ सकते हैं। ये थी मौसम सूचना।

अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के समाचार सुर्खियों पर। रोज की तरह हमारे पास आज कई अखबार हैं, जैसे हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है। लगभग सभी अखबारों में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के लगभग सभी अखबारों में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून को दी गई मंजूरी की सूचना दी गई है। पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ जुर्माने के प्रावधान वाले विधेयक को कैबिनेट ने किया पास।

क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश डीएसपी बन गए। राज्य में 15 सितंबर से खेल प्रतिभाएं खोजी जाएंगी। बिहार सरकार ने क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को डीएसपी बना दिया। एथलीट पीयूष राज पुलिस सब इंस्पेक्टर बने। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन सब को नियुक्ति पत्र दिया। बिहार में पहली बार किसी खिलाड़ी को डीएसपी पद पर सीधी नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सितंबर से हर एक पंचायत में खेल प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा। अखबार में अगली सुर्खियां जो दी गई हैं उनमें अब सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे रहेगा, एक सप्ताह के अंदर होगा ये निर्णय।

IPL में होगी बिहार की भी टीम शामिल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शब्द। ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। अब आइए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म में रंग से। इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण, आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इसी के साथ प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से मुमताज को दीजिए इजाज़त।

0: मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8 बजने को हैं। अब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना।

0: को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव हुए।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
1: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
0: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
2: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है, आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है, कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है, सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज़ अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है, केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 7:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक देशभक्ति गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कर्मा से।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 8:20 हो चुके हैं। अब वक्त हो चला है पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म का नाम है सच्चा झूठा। आवाज़ है किशोर कुमार की और इसके गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं क्वाथ रोहतास से शेख जफर हसन और राकेश रोशन। इसी गीत की फरमाइश से आप सबों ने भी की है जतुका किशुनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवाना राही इमरान राजा आलम शेख शबाना आलम चांदनी नाज और सिराजपुर गणेशपुर से आप हैं वकील राही फिरोज आलम नाज नाज परवीन अर्श बाबू। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय श्रीमती प्रीति राय नवनीत राय। छत्तीसगढ़ से आप हैं दतरंगी से हैं भागवत वर्मा लेवी से हैं गुलाब दास मणिकपुरी लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया छत्तीसगढ़ से आप हैं दुर्गा राम साहू। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अभी आप सुन रहे थे फिल्म में आया सावन झूमके से ये गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। इसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की और इसके गीतकार हिंदीवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा ढोली, सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी, आप हैं नूर महल महसौल सीताबड़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, कलेर बिहार से आप हैं सदफ आरजू, कुवात बिहार रोहतास से आप हैं शेख जफर हसन और राकेश रोशन। इसी गीत की फरमाइश करने के लिए आपने भी भेजा है गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सदाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

लीजिए, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम जो आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से। इसके गीतकार हैं और संगीतकार भी हैं नुसरत फ़तेह अली खां, आवाज़ भी है नुसरत फ़तेह अली खां की। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन्निसा सदाम मंसूरी, नगमा मंसूरी, और आप हैं बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से आप हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। इसी की फरमाइश करने के लिए आपने भी भेजा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। आप हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंदन आर्य, अभय नंदन आर्य, परमानंदन आर्य, पंकज प्रमोद रोहित और मोहित। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। कार्यक्रम पसंद आपकी अभी ही संपन्न होता है। मुमताज को दीजिए इजाज़त। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और संदेश। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: पशु पालकों एवं कृत्रिम गर्भाधान यानी AI से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
2: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT से ही कराएं। AI कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप AI तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। विभिन्न छात्र संगठनों के बिहार बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पटना में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री आज राज्यवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और नालंदा के झंडू कुमार ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक दिलाया। पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: गौरतलब है कि श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। यह अपने पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से आयोजित बिहार बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिहार बंद को राजद समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशन, ट्रेन और सरकारी प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती की गई है।
2: राजधानी पटना में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 300 पीटीसी जवान और 500 अतिरिक्त होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इधर राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर नगर 1 और नगर 2 पुलिस अनुमंडल में विधि व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रहने के चलते सोशल मीडिया सेवाओं पर प्रतिबंध को कल देर रात बहाल कर दिया है। सरकार ने जिले में चिन्हित स्थानों पर अफवाहों और भड़काऊ संदेशों के प्रसार की आशंका को देखते हुए 24 जुलाई से 26 जुलाई की सुबह 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: पटना में पेपर लीक को लेकर छात्र संगठनों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में पुलिस ने पालीगंज से भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ और आयसा के 4 छात्र नेताओं सहित 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। विधायक संदीप सौरभ को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय समेत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में के 24 हॉस्टल और लॉज में छापेमारी की। इस दौरान 43 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से पूछताछ के बाद 24 को छोड़ दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों में 3 छात्राएं भी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्यवासियों को

0: विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पटना की ज्ञान भवन परिसर स्थित बापू सभागार में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य भर में 11,464 करोड़ रुपए की लागत की 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन का भी उद्घाटन करेंगे। 6 मंजिला इस भवन में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, रेडियोलॉजी, ट्रॉमा और आपातकालीन सेवाओं सहित कई उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में उद्योगों के विकास, निवेश संवर्धन और आवश्यक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। वे पटना में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री दुबे ने उद्योग जगत से सरकार के साथ साझेदारी में आगे आकर नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जारी रुपे कार्ड के इस्तेमाल में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर रुपे कार्ड के कुल उपयोग में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 11% दर्ज की गई है, जो डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है। डाक विभाग ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार परिमंडल में अंतर्राज्यीय लॉजिस्टिक्स सेवा शुरू की है। नई सेवा के तहत देश के विभिन्न राज्यों के बीच पार्सल और व्यावसायिक सामान की तेज और भरोसेमंद ढुलाई की सुविधा मिलेगी। बिहार सर्किल की निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन ने कहा कि इससे छोटे और मध्यम कारोबारियों को कम लागत पर समयबद्ध परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पैरा पावर लिफ्टिंग की पुरुष हेवीवेट स्पर्धा में झंडू कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नालंदा के रहने वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 196 किलोग्राम का रिकॉर्ड प्रयास भी किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। पोलियो और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अपनी उपलब्धि पर झंडू कुमार ने कहा कि वे भारत के लिए पदक जीतकर काफी खुश हैं।
1: मेरा नाम झंडू कुमार पैरापावर लिफ्टर। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना देश का झंडा आज ऊंचा किया।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। इधर इस मामले में जगदीशपुर के अनुमंडलाधिकारी संजीत कुमार और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में दोनों अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे। बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी का नया निदेशक नियुक्त किया है।

0: किया गया है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी देवेश सेहरा को वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव तथा कुलदीप नारायण को नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। बिहार में नेपाल मूल की विवाहित महिलाओं का पंचायतवार डेटा तैयार किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर नेपाल से विवाह कर बिहार में रहने वाली महिलाओं की नागरिकता और पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापित जानकारी संकलित कर जिला प्रशासन के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अद्यतन और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना तथा नागरिकता संबंधी अभिलेखों को व्यवस्थित करना है। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
1: दिनांक 25 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड स्थित कन्या मध्य विद्यालय फुतौली में मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने के मामले में प्रधानाध्यापिका संजुला कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्कूल की चारों रसोइयों की सेवा समाप्त कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक और पिकअप वैन से 155 कार्टन शराब बरामद की है। बरामद शराब का बाजार मूल्य 14 लाख रुपए बताया जाता है। वहीं जिले के पुनपुन स्थित केवड़ा ओपी के पास एसटीएफ ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल, 12 कारतूस, राइफल के 32 बैरल, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गोदाम में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और जिला औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पेपर लीक को लेकर हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकार ने नीट को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के मामले में माले विधायक गिरफ्तार, आज बिहार बंद, 8 उपद्रवियों पर इनाम घोषित। प्रभात खबर की सुर्खी है, पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट में मंजूर, 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, 3 माह में निपटेगा केस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल राष्ट्र बैंक ने बदला नियम, नेपाल में अब 200 और 500 के भारतीय नोट ले जा सकेंगे। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, जहानाबाद फायरिंग पर सदन में जोरदार हंगामा। आज अखबार लिखता है, बिहार विधानमंडल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 21 विधेयक पारित, 1038 प्रश्नों पर हुई चर्चा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। विभिन्न छात्र संगठनों के बिहार बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पटना में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री आज राज्यवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और नालंदा के झंडू कुमार ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक दिलाया, पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
1: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव।

0: जानकारी चाहिए।
1: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
2: 1950?
1: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
3: मतलब जानकारी भी, मार्गदर्शन भी।
1: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
2: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
1: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
4: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
5: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
6: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
5: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 9:06 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र से और अनुप्रसारित होने वाले हमारे केंद्र से कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मलिका के अंतर्गत कुछ हिंदी फिल्म संगीत। 9:30 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। और प्रातः 10:00 हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 10:05 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम विकास के सोपान। सूत्रधार होंगे लाल बहादुर दुबे। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। रसधार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 10:45 पर, और शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन के अंतर्गत कुछ भक्ति संगीत। युवाओं के लिए कार्यक्रम युवाणी का समय होगा शाम 5:30 पर, और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। सांझ गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर, और 7

बजकर 15 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। 7:50 पर समय होगा साप्ताहिक विकास मंडल समीक्षा का, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। और 8 बजे हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में।

8:15 पर समय होगा कार्यक्रम हेलो मन पसंद का, और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप सुनेंगे 8:45 पर, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर, और 9:30 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। ये था आज प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र से और अनुप्रसारित होने वाले हमारे केंद्र के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। FM बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं, और अब समय होता है कार्यक्रम गीत मलिका का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म असंभव से। इसके गीतकार हैं योगेश और संगीतकार मीना मंगेशकर, और आवाज़ है दोस्तों आशा भोसले एवं साथियों की।

0: such an owl.
1: ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म जान से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आनंद मिलिंद। आवाज़ें हैं दोस्तों उदित नारायण और साधना सरगम की।

आइए हसन कमाल की लिखी ये गीत सुनते हैं। इसको संगीत से संवारा है आरडी वर्मन ने और आवाज़ है सलमा आगा की। फिल्म का नाम है निकाह।

आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म नील कमल से। इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि। आवाज़ है दोस्तों मोहम्मद रफ़ी की।

0: ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

महिला संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
1: कुछ समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जीएस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है।

एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुनकर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जी एस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 10 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
4: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
3: श्री मोदी के वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि CJP ने 3 प्रमुख मांगें रखी हैं और पेपर लीक रोकने के अलावा कुछ सुझाव भी दिए हैं।
5: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल सुझाव हुए।
3: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट पेपर परीक्षा लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में 5वें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में

उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारतीय जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु की खबर है। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देश

0: तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से समाचार FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 10:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विकास के सोपान। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं लाल बहादुर दुबे। पर आइए सुनते हैं इससे पहले ये संदेश।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा के बारे में। शिवसागर प्रखंड मुख्यालय से उत्तर लगभग 7 किलोमीटर और सासाराम नगर निगम कार्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सासाराम करघर रोड से पश्चिम थोड़ी दूरी पर स्थित है डिहरा। बाराडीह पुल से सासाराम जाने वाली बाईपास सड़क से होते हुए शिवपुर चितौली के रास्ते वहां पहुंचने का सुगम मार्ग है। इसके अलावा बेरुकहीं से भी जाने का मार्ग है। लगभग 150 घरों की बस्ती में रहने वाले लोगों की स्थिति अच्छी दिखी। डिहरा मोहल्ला में गली नाली पक्की दिखी, लेकिन कई जगह नाली टूटी हुई तथा बगैर सफाई का भी दिखाई पड़ा। मोहल्ला के कुछ भागों में बिजली के पोल पर कवर्ड तार दिखा तो कुछ तरफ खुला तार टंगा हुआ दिखा। मोहल्ला के नज़दीक में ही एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वहां जाने का रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चे खेत की मेड़ पकड़कर वहां पढ़ने जाते हैं। श्रोताओं ये तो रही नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मोहल्ला वासियों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया डिहरा के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं आज हम रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा में उपस्थित हैं और हमारे साथ डिहरा के कुछ

0: लोग हैं, तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी आप अपना परिचय दें।
1: विष्णु कुमार सिंह, डिहरा।
0: डिहरा तो अब नगर निगम हो गया है ना?
1: हाँ जी जी, वार्ड नंबर 6 है।
0: तो ये बताइए कि डिहरा पहले कौन सा पंचायत था?
1: कुमाऊं।
0: आज डिहरा की स्थिति जो आप देख रहे हैं, पहले से और आज तुलना करते हैं तो क्या कुछ विकास महसूस होता है?
1: पहले से बहुत काफ़ी विकास हुआ है
0: जी,
1: क्योंकि पहले लाइन का व्यवस्था नहीं था और सब व्यवस्था यातायात का साधन भी नहीं था, लेकिन आज यहाँ हो गया कि गाड़ी से आदमी अपने दरवाजे पर चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या स्कूल का है, बहुत बड़ा समस्या।
0: चलिए तो स्कूल के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले ही बताइए कि इस मोहल्ला में जो गली और नाली है उसकी क्या स्थिति है?
1: 10 आना जो है सो सही है, 6 आना कुछ खराबी है।
0: क्या गली और नाली दोनों?
1: नहीं नहीं, जहाँ कुछ नली जो है सो उधर नहीं बना है, इधर उधर साइड में
0: जी
1: नली अभी प्रोग्राम सुनने में आया है कि पास हो गया, लेकिन बना नहीं है अभी।
0: नाली में अभी समस्या है।
1: हाँ,
0: आप गली की क्या स्थिति है?
1: गली की स्थिति तो सही है।
0: अच्छा, बिजली यहाँ पर आप लोगों को मिलती है? अच्छे
1: जी, बहुत अच्छा।
0: और बिजली में जो सरकार छूट दे रही है अभी, उसका लाभ ले रहे हैं कि नहीं है?
1: ले रहे हैं हम लोग 125 यूनिट से, जो अधिक जो
0: अधिक
1: जो उसका लगता है
0: जी। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय है कि नहीं है?
1: विद्यालय है, मगर वहाँ जाने का रास्ता नहीं है।
0: विद्यालय किस कक्षा तक है?
1: 5 तक।
0: तो वहाँ पर जाने का रास्ता है, वह नहीं है, क्या दिक्कत हो गई है?
1: दिक्कत यह है कि दोनों तरफ धान है, अब लड़का इतना पानी हेल कर जा रहा है, अब बताइए लड़का वास्ता लेकर गिर जाता है।
0: तो पहले जो विद्यालय बना था वहाँ जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, रास्ता नहीं था?
1: नहीं सर, बात तो है कि कैसे बना, उस समय जमीन उन्होंने दे दिया, लेकिन पहले से भी मार्ग नहीं है उसका।
0: तो बिना मार्ग के वहाँ पर विद्यालय बन गया, लेकिन बच्चों को ध्यान नहीं रखा गया कि वहाँ पहुँचेंगे।
1: हाँ, इसका समस्या
0: जो है, तो बरसात के समय में जो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, सबको कठिनाई होती होगी?
1: सभी लोगों को।
0: हाँ। अच्छा, आपके मोहल्ला में आंगनबाड़ी केंद्र भी है?
1: जी हाँ
0: है। क्या स्थिति है उसकी?
1: लड़का जाता है, सब छोटा छोटा लड़का बच्चा आंगनबाड़ी है, उसका स्थिति तो इस समय अच्छा है, लेकिन वहाँ भी स्थिति, जाने का स्थिति वहाँ जैसे सही नहीं है।
0: तो वह कहाँ पर है?
1: वो काली माई के बगल में है।
0: अच्छा, यहाँ पर पीने वाला पानी, हर घर नल जल योजना शुरू है कि नहीं?
1: है, 16 आना गाँव जो है सो 4 आना का पानी मिल रहा है, बाकी 12 आना का पानी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों के तरफ इस गली में कहीं नहीं है, उधर केवल 10 घर में होगा, चाहे 15 घर,
0: बस सब घर तक नहीं पहुंच
1: पा। नहीं नहीं नहीं।
0: अच्छा, ये कुछ विकास की बातें नहीं, आप सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ आपको या आपके घर के सदस्यों को मिल रहा है?
1: राशन कार्ड जो है सो जो गरीब तबका के, हाँ, जिसका नामकरण हो गया है उसको तो राशन मिल रहा है।
0: आप भी उसके पात्र हैं?
1: हम हैं, वहाँ जहाँ हमको मिलता है।
0: मिलता है ना?
1: हाँ मिलता है।
0: और जिनका राशन कार्ड होता है वो आयुष्मान कार्ड भी बनता है, बनवाए हैं?
1: हाँ।
0: आपकी उम्र कितनी होगी?
1: हमारा उम्र कम से कम 68।
0: तो पेंशन योजना की राशि मिलती है?
1: हाँ, अब शुरू हुआ है।
0: किसान होंगे, अगर खेत अपनी होगी तो उसके लिए किसान सम्मान निधि योजना की भी राशि मिलती है, 2000 करके 6000 मिलता है।
1: हम एक आदमी को मिलता है।
0: तो कहने का मतलब कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन विकास में कुछ कमी आप बता रहे हैं जी। धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: राम भरत सिंह।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: डेरा मोहल्ला,
0: वार्ड नंबर
2: 6।
0: अच्छा, नगर निगम सासाराम
2: जी।
0: अच्छा बताइए, पहले से और आज देखते हैं तो लगता है कुछ विकास हुआ है?
2: पहले की अपेक्षा आज तो मतलब कि बहुत सा विकास हुआ है, यानी 14 आना विकास हो चुका है गांव के अंतर्गत। बिजली कहिए, चाहे रोड कहिए, चाहे जो भी नाली गाली है, विकास में है। अभी देखिए रहे हैं कि ताल में पूर्व किनारे घाट बन रहा है,
0: पोखरा है, पहले का
2: पोखरा है।
0: अभी जीर्णोद्धार का काम कुछ चल रहा है,
2: अभी चल रहा है।
0: और नाली गली कैसी है?
2: नाली गली सर सही है, लगे कुछ भाग में जो है नाली की स्थिति दयनीय है, जो
0: कि सफाई नहीं हो रही
2: है। सर सफाई ढंग से नहीं हो रही है, ढका हुआ कुछ नाली है, 400-500 फीट होगा, ढका हुआ नाली मिलेगा।
0: पीने वाली पानी की समस्या यहाँ पर लोग बता रहे हैं,
2: पानी 10 घर से 11 घर नहीं पहुँच रहा है, पूरे गांव जो है चप्पा कल के ही लोग पानी पीते हैं।
0: अच्छा, आपका जो डिहरा मोहल्ला है ये कितने घरों की बस्ती होगी?
2: होगी कम से 160 या 150।
0: यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
2: ज्यादातर खेती अपना गृहस्थी करते हैं।
0: गृहस्थी कार्य
2: जी,
0: गृहस्थी के लिए पानी समय से उपलब्ध हो जाता है?
2: पानी तो सर नहर ही है बगल में, लेकिन करहा का सर समस्या है, जो कि पटवन ढंग से नहीं हो रहा है, करहा सर सफाई नहीं है। आ कुछ सर समस्या है कि कहीं कहीं पानी जो है लग रहा है, जो कि निकासी उसका नहीं है। जैसे कि सिवान में चलिएगा, धान अभी कुछ नहीं था, 25 बीघा खेती हम देख लाएंगे, जो कि कम से कम 1 या 1.5 फीट के पानी के अंतर्गत में सब डूबा हुआ है।
0: तो क्या दिक्कत है कि मैंने पानी नहीं निकल पा रहा है?
2: सर नाला छोटा है, अब कितना खींचेगा?
0: अच्छा, आप लोग अपने प्रखंड मुख्यालय से कितनी दूरी पर है, मतलब कि प्रखंड मुख्यालय आपका कितना दूर पड़ता है? यहाँ
2: 7 किलोमीटर यहाँ से होगा।
0: सासाराम
2: होगा कम से कम 10 किलोमीटर हो जाएगा।

0: मतलब सासाराम दूर है यहाँ से।
1: जी जी,
0: यहाँ पर बिजली की तार हम देख रहे हैं कि बहुत से क्षेत्र में खुला लगा हुआ है, क्या कवर तार यहाँ पर सब जगह नहीं लगे हुए हैं?
1: कवर तार पहले लगा हुआ था, लेकिन तो कुछ ऐसा समस्या हो गया है, विभागीय कहिए चाहे पब्लिक कहिए, जो कि कट जा रहा था कहीं कहीं ना, तो लोग अब मिस्त्री आ नहीं रहा था सब, तो सब गांव की जो ग्रामीण जनता है सो अपने से मतलब अलग अलग करके जला रहे हैं। फोन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर है तो वहाँ पर है, तो लापरवाही नहीं कहा जाएगा।
0: अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ आपको या आपके घर के सदस्यों को मिल रहा है?
1: हाँ सर, मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री निधि योजना भी मिल रहा है,
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
1: जी जी,
0: और राशन कार्ड के भी पात्र हैं?
1: जी नहीं।
0: अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं?
1: बहुत सारे लोग को मिला है, जो गरीब तबका के लोग हैं बहुत सारे मिला है, कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर 60 या 70 लोग को मिला है।
0: मतलब कि योजनाएं यहाँ लोगों तक पहुँच रही हैं?
1: जी जी, योजना का लाभ मिल रहा है।
0: जी धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: गया तिवारी।
0: जी, कहाँ के रहने वाले हैं?
2: डिहरा के।
0: तो डिहरा तो अब नगर निगम क्षेत्र हो गया है ना?
2: जी जी।
0: वार्ड नंबर
2: 6।
0: विकास के मामले में आपका जो मोहल्ला है उस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: नली तो जो पहले बना था पंचायत द्वारा गांव में, लेकिन वो ईंट नहीं जोड़ा पाया दोनों साइड से, तो गंदा हो जा रहा है,
0: भर जा रहा है,
2: ढह भी जा रहा है।
0: और गली?
2: गली तो पक्की सब हो गया है
0: मोहल्ला में, हर जगह मैंने।
2: हाँ हाँ, पक्की हो गया।
0: आप लोगों का जो संपर्क पथ है, मतलब कि जो मोहल्ला से जाने के लिए, चाहे शिवसागर प्रखंड जाए चाहे सासाराम, तो पक्की है ना? बढ़िया
2: जी, पक्की है,
0: कोई दिक्कत नहीं है?
2: दिक्कत नहीं है।
0: बिजली आपके यहाँ बढ़िया रहती है?
2: बिजली रहती है।
0: बिजली में सरकार छूट दे रही है, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं?
2: जितना छूट दिया है वो तो मिल ही रहा है
0: जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय है यहाँ पर?
2: जी, विद्यालय है, लेकिन वहाँ किसी तरफ से जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, आर का पानी टूटा,
0: तो बरसात का समय है और समस्या,
2: अब पानी हिलकर जा रहा है, किधर से भी रास्ता नहीं। पब्लिक का खेत है, लाट छोर तो है नहीं कि कोई ये करे, अब गवर्नमेंट उसको चाहेगी तो वो ले करके वो रास्ता दे सकता है।
0: अच्छा, ये बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ आपको, आपके घर के सदस्यों को कुछ मिल रहा है?
2: हाँ मिलता है, सम्मान निधि मिलता है, वृद्धा पेंशन।
0: अच्छा, किसान सम्मान निधि और वृद्धा पेंशन योजना की। आपकी उम्र कितनी है?
2: 70 से अब ऊपर होता होगा।
0: तो देखिए, 70 या 70 से ऊपर जिनकी उम्र है उनके लिए एक योजना होती है आयुष्मान कार्ड योजना, बनवाए हैं?
2: ना जी, अभी नहीं,
0: क्योंकि जिनका राशन कार्ड होता है उनको बनता है, या नहीं तो फिर जो 70 साल हो गए हैं कोई व्यक्ति उनको बनता
2: तो
0: है।
2: कोई आया नहीं, अब अपने से जाकर बनवाना
0: पड़ेगा, बनवा लेना चाहिए, तो कभी उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका लाभ लिया जा सकता है
2: जी।
0: और सब तो सही लग रहा है ना?
2: और सब ठीक है, थोड़ा वही नली जो टूटा फूटा हुआ है गली में।
0: जी जी, धन्यवाद। श्रोताओं, नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको सुनवाते हैं एक गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, और फिल्म है जब जब फूल खिले।

0: इस गीत के बाद आइए चलते हैं लोगों के बीच। श्रोताओं, आज हमारी बातें हो रही है रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा के लोगों से, और जान रहे हैं डिहरा में हुए विकास कार्य और योजनाओं के बारे में। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और उनका परिचय जानते हैं।
1: मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है, सासाराम नगर निगम वार्ड नंबर 6 ग्राम डिहरा के निवासी हैं।
0: अच्छा, डिहरा में कुछ पहले और आज में तुलना करते हैं तो परिवर्तन देखते हैं?
1: हाँ सर, परिवर्तन पहले से बहुत ज़्यादा है। पहले रोड भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, मतलब 2008 के पास हम लोग छोटा छोटा थे तो बिजली आई, बहुत उत्साह था उस समय। हम लोग खुद ढीबरी पर पड़े हुए हैं।
0: अभी आप क्या करते हैं?
1: हम अभी स्टडी करते हैं।
0: किस कक्षा में हैं?
1: अभी तो मेरे ग्रेजुएशन फाइनल है, कंपटीशन का प्रिपेयर कर।
0: कंपटीशन की तैयारी, क्या आगे बनने की इच्छा है?
1: बीपीएससी।
0: हमारी शुभकामना आपके साथ है, मेहनत करें, और निश्चित ही मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। आप बताइए, मोहल्ला में गली नाली की क्या स्थिति है?
1: गली नाली तो सर मतलब ढलैया हो गया है, लेकिन नाली का भी समस्या है कि पानी ज़्यादा होने पर दिक्कत आती है, और खेती में सर पटवन का भी दिक्कत है। जो करा था वो मतलब चौड़ा था पहले, अब सब लोग खेत में मिला लिया है तो दिक्कत होता है,
0: पटवन अतिक्रमित हो गया है। हाँ, सफाई भी नहीं,
1: सफाई भी नहीं हो पाता है,
0: जबकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करते हैं।
1: हाँ, कृषि कार्य, किसान ही है।
0: आप पढ़ाई प्राथमिक स्तर किए थे, कहाँ से, गाँव से हैं?
1: हाँ सर, प्राथमिक विद्यालय डियरा से ही किए हैं।
0: तो उस समय विद्यालय की क्या स्थिति और आज कैसी है?
1: पहले तो सर हम लोग पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, मतलब उस समय बिल्डिंग नहीं बना हुआ था। अभी मतलब कुछ साल पहले ही, 15-20 वर्ष लगभग पहले बना है, लेकिन अभी भी समस्या वहाँ है कि वहाँ जाने के बच्चों के लिए रोड नहीं है।
0: अभी आपका विद्यालय जो यहाँ पर है वो पक्का है ना?
1: हाँ सर, पक्का है, पूरी तरह है, मतलब हर सुविधा है, लेकिन रोड नहीं है वहाँ, बहुत
0: वहाँ पहुँचने का मार्ग नहीं।
1: हाँ, बच्चे लोग गिर जाते हैं खेत में, आने जाने में बारिश में दिक्कत है।
0: जी,
1: आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, और यहाँ प्राथमिक विद्यालय डियरा में।
0: आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है?
1: आंगनबाड़ी सर वहाँ भी रास्ता का दिक्कत होता है, बच्चे लोग पैर और फिसल जाता है, आने जाने में दिक्कत है,
0: समस्या होती है।
1: हाँ सर।
0: अच्छा, यहाँ लोगों को पेयजल का लाभ नहीं मिल पाता है सभी को?
1: ना सर, सभी को नहीं मिल पाता। गांव में चालू हुआ था उसका कार्यक्रम, लेकिन मतलब जो ढलाई करो तोड़ के पाइप लग रहा था ना, तो बोल रहे थे कि हम लोग ढालेंगे नहीं, इसी तरह रहेगा, तो गांव के लोग बंद करा दिए।
0: और सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ आपको, आपके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है?
1: हाँ सर, मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है।
0: तो उसकी जो राशि मिली थी उसे घर बन चुका है?
1: हाँ, डोर लिंटर हो गया है, अब अगला मतलब फोटो खींच के गया है, अब अगला कब आएगा अब देखिए।
0: अच्छा, मतलब कि अभी किस्त बाकी है।
1: हाँ हाँ।
0: और राशन कार्ड?
1: इसके अलावा राशन कार्ड सर बना है, कट गया, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि वाला जो मिलता है मोदी वाला, तो वो मतलब उसका मिला था, तो लोग बोलते हैं कि कोई एक ही रहेगा, तो मेरा कट गया है।
0: ऐसा तो सुनने में हमें नहीं आया, कहीं हो सकता है कि आप दिखलवाएंगे कि किस कारण से रुका हुआ है, चकटा है। अच्छा, राशन कार्ड वालों को आयुष्मान कार्ड बनता है, बनवाए हैं कि नहीं?
1: हाँ सर, बना है, लेकिन वो तो मतलब रिजेक्ट हो गया, अभी तो फिर से उसको रिस्टार्ट कराना पड़ेगा।
0: और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ कोई नहीं
1: तो
0: है?
1: दादा दादी है नहीं, पापा को अभी उम्र नहीं हुआ है, 60 साल नहीं हुआ है।
0: योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं?
1: हाँ सर, योजनाएं पहुंच रही है।

0: रूप से तो मतलब नहीं, लेकिन अधिकतर मिल रहा है सर।
1: जी धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: जी धनंजय कुमार।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: जी मोहल्ला डियरा 6 नंबर वार्ड
1: नगर निगम सासार।
2: जी
1: डियरा के रहने वाले, ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
2: जी ज्यादातर लोग किसानी करते हैं।
1: जी तो कृषि कार्य के लिए पानी की लोग समस्या बता रहे हैं, पानी के अलावा और कोई समस्या भी लोगों के साथ है?
2: जी पानी के अलावा तो समस्या बहुत है, जैसे कि जहाँ भी बैंक है बंधा पड़ा है वहाँ पर भी टूट जाता है। अभी फिलहाल में नहर पर टूटने वाला है, बढ़िया से मरम्मत नहीं होगा तो टूट जाएगा, तो इधर पानी जब ठेलेगा तो उससे भी बाढ़ मचा देगा, पूरा डूब जाएगा।
1: तो उसका तो मरम्मत समय समय पर नहर विभाग के तरफ से नहीं होता है?
2: बहुत कहते कहते सुनते हैं लोग
1: जी,
2: और नहीं तो बहुत दिन के बाद, अभी फिलहाल में 2 साल हुआ जोड़ा गया बेरू कहीं में
1: जी,
2: नहीं तो डिहरा में पानी इस पार नहीं आता था।
1: कभी पानी की समस्या
2: जी,
1: कभी पानी से समस्या
2: दोनों तरफ से समस्या।
1: अच्छा आप क्या करते हैं?
2: हम किसानी करते हैं।
1: तो किसानों के लिए जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है उसमें से कुछ लाभ आपको मिल रहा है?
2: जी नहीं,
1: कृषि सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलती है?
2: जी नहीं।
1: क्यों, खेत अपने नाम से नहीं है क्या?
2: मेरे नाम से नहीं है, मेरे दादा के नाम से।
1: तो घर में किसी को नहीं मिलता है?
2: नहीं, माता जी को मिल रहा था, अभी फिलहाल में रुका हुआ है।
1: और बताइए मोहल्ला में बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय तो है लेकिन वहाँ पर रास्ता की समस्या लोग बता रहे हैं?
2: जी रास्ता का तो समस्या है, विद्यालय जो बनी है मेरे जमीन में भी बनी है, लेकिन मैं बोल चुका हूँ वार्ड साहब से
1: जी
2: कि मैं वहाँ से 12 फीट का रास्ता अपने जमीन में दे रहा हूँ, और उसके बाद आगे में मोड़ा पर आंगनबाड़ी के बाद में एक पंडित जी का है ना, उनसे आप लोग पूछ लीजिए और उनसे पूछकर रोड खिंचवाइए वहाँ पे। अभी भी 6 फीट में हम दिए हैं बच्चों को आने जाने के लिए ना।
1: बहुत नेक कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब विद्यालय हो गया है बच्चों की वहाँ पर पढ़ाई होती है, शिक्षक हैं, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है, तो बच्चे अगर सही ढंग से नहीं पहुँच पाएंगे तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी
2: जी।
1: इसके लिए आपने 6 फीट अभी दिया और आगे 12 फीट देने के लिए तैयार है
2: जी।
1: तो गांव घर के लोगों को मिल करके प्रयास करना चाहिए कि जो आगे जिनकी जमीन है।
2: प्रयास हुआ था, पास हुआ था, अभी बिल्डिंग में डाला गया है सर, वार्ड साहब बोल रहे थे।
1: प्रयास कीजिए आप लोग, अगर उसमें सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है।
2: जी हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं।
1: अच्छा सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ आपको आपके घर के सदस्यों को मिल रहा है?
2: कृषि पर मिला है वही, बाकी ये सरकारी योजना कुछ नहीं।
1: कोई बूढ़े लोग नहीं है घर में जो 60 साल से ऊपर?
2: विधवा पेंशन मिल रहा है माँ मेरी।
1: और राशन?
2: जी मिल रहा है,
1: मिल रहा है। चलिए तो कुछ जो योजनाएं हैं वह आप लोगों तक पहुँच रही है
2: जी, जी
1: इसमें कोई दिक्कत नहीं है?
2: कोई दिक्कत नहीं है
1: जी। धन्यवाद। श्रोताओ अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं।
3: मेरा नाम है अनुज कुमार।
1: रहने वाले कहाँ के हैं?
3: डेहरा के हैं।
1: वार्ड नंबर 6 है ना?
3: 6 है।
1: नगर निगम सासाराम। क्या करते हैं अनुज जी?
3: खेती करते हैं।
1: अच्छा डेहरा में कुछ विकास पहले से लग रहा है, हुआ है?
3: हाँ लग रहा है, रोड बन गया है।
1: नाली की क्या स्थिति है?
3: नाली की स्थिति बढ़िया है लेकिन नाली सब जाम रहता है,
1: सफाई नहीं होती है?
3: नहीं होती है।
1: अच्छा ये नगर निगम में आ गया है तो यहाँ पर नगर निगम का कुछ लाभ आप लोगों को मिल रहा है? झाड़ू लगना?
3: हाँ सब लग रहा है।
1: नाली की सफाई?
3: हाँ सफाई तो बनी।
1: कूड़ा कचरा उठाओ?
3: हाँ सब घर आकर ले जाते हैं सब कचरा।
1: अच्छा सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ आपको आपके घर के सदस्यों को मिल रहा है? जैसे राशन कार्ड
3: मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। राशन
1: कार्ड के पात्र आप हैं?
3: मिल रहा है।
1: राशन कार्ड वालों को आयुष्मान कार्ड भी बनता है, बनवाए हैं कि नहीं?
3: नहीं बनवाए नहीं।
1: 5 लाख तक के इलाज पूरे परिवार के लिए होता है?
3: नहीं
1: बनवा लेना चाहिए ना, ये कहें छोड़े
3: बनवा लेंगे।
1: जिसके नाम से खेत होता है उन्हें कृषि सम्मान निधि योजना की राशि मिलती है, 2-2 हजार करके 6 हजार आते हैं साल में।
3: मेरा मिलता था लेकिन कट गया है, भाई साहब को मिलता है।
1: और घर में कोई जो कि पेंशन योजना के
3: लाभार्थी हो? विधवा पेंशन मिलता है,
1: माँ को मिलती है। तो योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, इसमें कोई दिक्कत?
3: बढ़िया चल रही है सर।
1: बच्चों को यहाँ पर अच्छे खेलने के लिए फील्ड वगैरह है कि नहीं?
3: नहीं खेलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं खेलने वाला, फील्ड नहीं,
1: नहीं है।
3: होना चाहिए फील्ड, होना चाहिए
1: जी। धन्यवाद। श्रोताओ आप सुन रहे थे नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला डिहरा में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं।

0: हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisasaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकास के सोपान। ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, ये निर्गुण गीत है, आवाज़ है मदन राय की।

इसी गीत के साथ है कार्यक्रम लोक माधुरी अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 10:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गज़ल से, आवाज़ है बद्री बहार की। इसके गीतकार हैं अशोक शिवपुरी और संगीतकार भी हैं अशोक शिवपुरी। एल्बम का नाम है मोहब्बत पुकारे।

अब आइए सुनते हैं मुकुल सिंह की आवाज़ में ये गीत। इसके गीतकार हैं अशोक शिवपुरी और संगीतकार विनय विहारी। एल्बम का नाम है मौसम सुहावन।

आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं पल्लवी जोशी की आवाज़ में। गीतकार हैं सूरज कुमार निर्मल और संगीतकार रोहित कुमार। एल्बम का नाम है बलम छोड़ी ना कलैया।

इसी के साथ है कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें आपने सुनी बुढ़ा मिल गया फिल्म के इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, और अब आपको कारवां फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।

0: कारवां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। और आपको ये भी बताते चलें कि आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे से फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अभी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान। और मैटिनी शो प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बातें की थी जल है तो कल है, सुभजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, और उन्होंने बीते हफ्ते बताया था कि कैसे जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने शुरू किया था वृक्षारोपण से, और तब उन्हें समझ में आया कि पेड़ तो तभी जिंदा रह सकते हैं जब पानी उनको जरूरत भर का मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं
1: जी
2: वो नेचर लवर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड है, वो
1: बिल्कुल
2: बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, जो होते हैं कर्मयोगी हैं सब
1: जी।
2: उनके
1: बिल्कुल
2: साथ मिलके जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, जिस हिसाब से कॉल्स आते हैं, पिछले हफ्ते जब बात हुई कई कई लोगों ने मुझे मेल किया है, इनफैक्ट मेरे इनबॉक्स लगभग भरने वाला था
1: जी जी
2: तो बहुत अच्छा लगा इस बात
1: बिल्कुल, क्योंकि विविध भारती को पूरे देश में और बल्कि दुनिया के तमाम देशों में लोग सुनते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने तई बदलाव करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने बातें की थी तो आपने जल तारा के बारे में बताया था, मैं ये जो बातचीत है इसको गांव की दिशा में मोड़ना चाहता हूं।
2: बिल्कुल,
1: गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसका जमीन पर घर है और गांव में कुछ दूर पर उसके खेत हैं, या तो उसके खेत हैं या किसी और के खेत हैं जहां वो काम करता है, ऐसे लोग जो विविध भारती सुन रहे हैं उनको वाटर कंजर्वेशन या जल संचय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं अपने तई, ये बताइए।
2: बिल्कुल जी, इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि किसानों का विषय आपने लिया है, क्योंकि जो मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं ज़्यादातर किसान हैं, उसमें मैं तो बोलूँगा 100 में से 80 किसान भाई बहन है जिनका मेल आ रहा है, एंड सब पानी से परेशान है
1: जी।
2: क्यों? कि उन लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे पास कम से कम 10 महीना पानी होता था, आज हमारे पास 8 महीना पानी है, बाकी हम लोग 4 महीना खाली बैठे रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें, खर्चा नहीं पूरा होता, इसलिए शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है, एंड आजकल के न्यू जनरेशन अवॉइड कर रहे हैं खेती करना क्योंकि ये पानी की कमी है, इसलिए वो हमें ये बोलने, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कुछ बताइए हमारे पास 12 महीना पानी हो ताकि हम 12 महीना काम करेंगे, एंड बात सही है क्योंकि अगर हम 150 करोड़ आबादी है हमारे देश का और इनको अगर हमें खाना खिलाना है तो हमारे किसान तो 12 महीना काम करना ही पड़ेगा ना उनको, अगर वो बोलेंगे कि 6 महीना पानी नहीं है, 4 महीना पानी नहीं है, हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एंड थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक लिया
1: जी,
2: एंड और भी बहुत सारे सवाल आए हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट यस, किसानों को पानी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है उनका खेती के लिए, एंड खेती में पानी उपयुक्त मिले, क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए, पानी का गुण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों को माइंड में रखते हुए स्पेशल खेत में जल संचय करने का थोड़ा डिफरेंट विधि है, लेकिन है यही सिस्टम, हमें शोष खड्डा बनाना है, हमें परकुलेशन पिट बनाना है, जल तारा बनाना है, बट उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, फ्री तरीका है, इसमें उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत है। देश भर में आज भी जो खेती हो रहा है हम लोग बोरवेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर,
1: और इस वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है
2: जी। देखिए, एक है जब बारिश हो रही है उस समय हम लोग ऐसी ऐसी चीजें ग्रो करते हैं जैसे चावल है, शुगर केन है, कॉटन है, कपास की खेती बहुत होती है, गेहूं की भी खेती होती है, जब पानी है तब हम लोग ये खेती कर लेते हैं, जब पानी खत्म हो जाता है तो हम लोग सब्जियों पे आ जाते हैं, हरी सब्जियों पे आ जाते हैं, तो इसलिए पहला तो हमें ऐसी चीज़ों को ग्रो करना है जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत पड़े, या जब पानी बहुत ज़्यादा है, आज भी हमारा 70% पानी बह के समुंदर में और नदी में चला जा रहा है
1: जी,
2: तो बारिश के समय जिन सब्जियों में और जिन चीज़ों में ज़्यादा पानी लगता है तो हमें उस समय ग्रो करना है क्योंकि पानी बहुत होता है, जैसे ही पानी कम

0: होने लगता है, हमारा पूरा फोकस चला जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि 6 महीना सोच लीजिए आपने बारिश का पानी खींच लिया, बाकी का 6 महीना हमें अगर काम करना है तो बहुत ज़्यादा हमारे किसान ज़मीन से पानी निकालने लगते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है सब्जियों का लेकिन ज़मीन का पानी खत्म हो जा रहा है,
1: ये जो
0: इसलिए
1: 70% पानी चला जा रहा है समुद्र में, इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या एक आम आदमी इसे बचा सकता है?
0: बस वही सोच है।
1: जी
0: यहाँ हम जब एक किसान की बात कर रहे हैं या किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं या किसान को माइंड में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, खेत का पानी खेत में रहना जरूरी है।
1: जी
0: एक तो हम लोग मेड़ बनाते हैं खेत में ताकि पानी रोक के रख सकें, दूसरा जब खेत में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बोरवेल सूख चुका है, बोरवेल में पानी नहीं है, तो वापस डालना भी जरूरी है। ये तो वही बात होगी, ज़मीन के अंदर एक पानी को आप अगर आप मान के चलिए, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, हज़ारों साल लगे हैं पैसा जमा करने में, मे भी आपके दादाजी पर दादाजी ने पैसा जमा किया था और अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वही हुआ है
1: पानी के साथ भी ऐसे ही है।
0: बस, तो पानी ख़त्म हो चुका है तो अब उसको हम लोग दोबारा वापस डालना ज़रूरी है। मैं सबको यही, ये जो जल संचय और जन भागीदारी का ही प्रेरणा है कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हर बोरवेल के बगल में एक माइक्रो पॉन्ड कहते हैं इसको, जल कुंड कहते हैं हम लोग, जल तारा ही कहते हैं, जिसमें वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, 15 फुट बाई 15 फुट और 2.5 फुट गहरा, एक छोटा सा जल कुंड बनाना है ताकि बारिश का पानी आपके बोरवेल का जो पाइप है, बोरिंग का जो पाइप है, उसके बगल में जमा रहे। एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बोलूँगा, जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि जब भी हम बोरवेल खोदते हैं, 6 इंच का पाइप अगर जमीन में जा रहा है तो 8 इंच की खुदाई होती है, जो मशीन होता है ना उसका मुंह बड़ा होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है वो तो ग्राइंड हो चुका है, वो तो पाउडर बन चुका है। अब अगर आप बोरवेल के आसपास पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का, तो धीरे धीरे नॉन स्टॉप जमीन में पानी जाता रहेगा,
1: क्योंकि वो पिट जो है वो बड़ा बना है,
0: बड़ा बना हुआ है। बोरवेल क्या होता है, 200, 300, 400, 1000 फीट नीचे से पानी निकाल रहा है, नीचे पत्थर है, पत्थरों के बीच में गैप है, उसको एक्वाफर कहते हैं, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। जिस गैप से हमने पानी निकाला है, और बोरवेल का पाइप मतलब एक स्ट्रॉ मान के चलिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी स्ट्रॉ को यूज करके अगर हम पानी वापस डाल दें तो हमारे पास पानी दोबारा भर जाएगा कम से कम लागत में, और कम से कम लागत के आपको सिर्फ श्रमदान करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
1: अच्छा, कोई किसान या कोई गांव वाला अपने घर में, खेत में या अपने आंगन में जल संचय की कोई विधा बनाना चाहता है, कोई सिस्टम बनाना चाहता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये सर। सबसे पहला जरूरी है, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि पानी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर एक पानी को आप संचय कर रहे हैं कि खेत में इस्तेमाल करना है और खेत का पानी है, तो याद रखिएगा खेत में हमने पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, टॉप सॉइल का पानी है, तो वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिफ्रेंशिएशन हम मेंटेन रखें। जिस बोरवेल में आपने खेत का पानी डाला है, तो 1 किलोमीटर दूर भी अगर आप उस पानी को निकालेंगे तो वो जहरीला हो सकता है, आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए घर में जो आप पानी जमा कर रहे हैं वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ होना जरूरी है। छत का पानी आप उसमें डाइवर्ट करवाइए, छत का पानी साफ होता है, पहले बारिश का पानी बह जाने दीजिए, फिर छत एकदम साफ हो जाता है, उस पानी को आप बोरवेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कीजिए। एक दो टेक्निक है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, तो छत का पानी बहुत साफ होता है, उसको आप बोरवेल के अंदर डालिए, साफ रहेगा, आप पी सकते हैं। खेत का पानी खेत में इस्तेमाल करेंगे, उसको पीने में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। एंड जल संचय उतना कीजिए जितनी आपकी जरूरत, बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है, कितना बारिश हो रहा है, कितने समय के लिए बारिश हो रहा है, आपको बता देगा कि कितना आपके पास छत है, उस हिसाब से कितना पानी आप कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हैं, चाहे आप एक टंकी बना के सेव कीजिए या परमानेंटली भूजल ग्राउंड वाटर में उसको जमीन में समाने दीजिए, जितना सोख हो जाएगा आप, जैसे कि मैं कह रहा हूँ उसमें इवेपोरेशन नहीं है, निकाल के इस्तेमाल करते रहिए, 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे वो जमीन के अंदर मिलेगा। बाकी अगर आप खेत है, आपको पानी ज़्यादा चाहिए, तो आपको सिस्टम ज़्यादा बनाना पड़ेगा। साइंस ये कहता है हर एकड़ में एक जल संचय होना चाहिए, हर एकड़ में एक जल तारा इंस्टॉल होना चाहिए, हर एकड़ में अगर आपके पास बोरवेल है, देखा जाता है हर एकड़ में एक बोरवेल मिल जाता है आजकल, तो बोरवेल इतना ज़्यादा लोगों ने बना दिया है, बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे देश में। एंड बोरवेल भी 4 वैरायटी के होते हैं, ये लोग आइडेंटिफाई अक्सर भूल जाते हैं ये चीज़। एक होता है फेल्ड बोरवेल, हमने एक जगह ड्रिल मशीन से

0: 300 400 500 फीट खड्डा किया और पानी मिला ही नहीं।
1: ओ,
0: हम तो भूल ही जाते हैं कि ये भी तो बोरवेल है।
1: और उसके बाद उसको छोड़ दिया ऐसे?
0: छोड़ दिया आपने, लाख रुपए खर्चा कर दिया एक खड्डा बनाने में और उसको छोड़ दिया। इसको आप जलतारा बना दीजिए, इसके ऊपर पानी कलेक्ट कीजिए, पानी जाने लगेगा, बहुत सिंपल। सेकंड, डेड बोरवेल एक होता है
1: जहां का पानी सूख चुका है।
0: जो पहले आता था, पिछले 5 साल से वहां पानी ही नहीं आया है। मतलब कहीं ना कहीं पानी आता था, अभी नहीं आ रहा है। मतलब पानी डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा,
1: यस।
0: तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डेड बोरवेल को अलाइव कर देना है। मुर्दा को हम लोग जान डाल सकते हैं,
1: जी,
0: वहां पे भी आप जलतारा लगा दीजिए। फिर मैं आ जाता हूं ड्राई बोरवेल, मतलब पिछले साल यहां पे पानी था, आज पानी नहीं है।
1: इसका क्या मतलब है?
0: मतलब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ज्यादा
1: वो तो
0: एक्सट्रैक्शन हो
1: डेड
0: गया
1: डेड
0: है।
1: बोरवेल में भी तो ग्राउंड टेबल वाटर नीचे
0: डेड
1: गया।
0: बोरवेल आना बंद ही हो गया है 5 सालों से। 5 साल
1: अच्छा,
0: का रिकॉर्ड बताता है पानी ही नहीं है। बट ये है ड्राई बोरवेल, जो पिछले साल पानी था आज नहीं है। ये
1: ओके।
0: फ्रेश फ्रेश अभी अभी मरा है ये।
1: तो इसको जिंदा जल्दी किया जा सकता
0: तुरंत
1: है।
0: इस प्रायोरिटी है।
1: जी
0: एंड चौथा कैरेक्टर मैं बोलता हूँ पार्शियली ड्राई, मतलब अक्सर लोग फोन करते हैं, भाई साहब मेरा 3 घंटा पानी देता था, अभी सिर्फ 15 मिनट पानी दे रहा है। पिछले साल इसी समय 2 घंटा पानी देता था, आज सिर्फ आधा घंटा पानी दे रहा है, तो ये पार्शियली ड्राई हो चुका है। या पिछले महीने तक पानी देता था, अभी पानी नहीं दे रहा है। मैंने, मेरे पास अभी जैसे किसान भाइयों का जो मेल आया है, जैसे पिछले हफ्ते आपने मेरा ये इंटरव्यू लोगों को दिखाया, ज़्यादातर यही बोल रहे थे कि हमारा पिछले साल जून महीने में पानी था, इस बार जून महीने में पानी नहीं है। पिछले साल मई महीने में पानी था, अभी भी बारिश नहीं आई है, तो हमारा पानी नहीं है। तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश उनको साल भर पानी मिल रहा है। बट कई ऐसे बोरवेल हैं जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब सूखने लग जाते हैं। उनको भी हम लोग ये 4 कैटेगरी को माइंड में रखते हुए जलतारा बना सकते हैं। 15 फीट बाय 15 फीट, 2.5 फीट गहरा खड्डा, बस
1: ये
0: इतना
1: तो
0: ही
1: कोई
0: है,
1: बहुत बड़ी बात नहीं है।
0: बस श्रमदान हो
1: अच्छा
0: रहा है। एंड थैंक यू
1: जी
0: एनएसएस, थैंक यू एनसीसी,
1: जी
0: ग्रीन क्लब,
1: जी
0: जो हमारे कॉलेज के बच्चे जा जाके ये बना रहे हैं। पालघर में हमने 750 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं
1: वाह वाह।
0: पिछले 1 सालों
1: और
0: में,
1: इससे बड़ा भारी बदलाव आया होगा।
0: और सब अलाइव हो गए हैं। सारे मरे हुए बोरवेल जिंदा हो गए हैं, और क्या, पानी ही भरा हुआ है, सब खुश हो गए हैं।
1: अच्छा, जो देश के सुदूर इलाकों के स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, मोहल्ले इस मामले में क्या कर सकते हैं? खासतौर पर अब ये हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस की जगह पर अपार्टमेंट आ गए हैं,
0: बिल्कुल,
1: और अपार्टमेंट में ये होता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं क्यों करूं वो करे, तो सब मिलकर करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना आसान है कि एक बिल्डिंग के लोग भी एक साथ आ जाएं और इस काम में जुट जाएं?
0: देखिए ये दो अलग अलग पहलू हैं, मैं बताना चाहूँगा। मैंने जो कुछ 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया है जल संचय के ऊपर,
1: जी
0: क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जुड़ गए इसलिए हो पाया। जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक एक जल तारा इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में 500 हज़ार बच्चे होते हैं, वो सीख जाते हैं ये चीज़, और वो घर जाके माता पिताओं को बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमारे स्कूल में दिखाया गया है, और हमने ये बनाया है, हम अपने घर में भी बनाएंगे, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और सबको मैं यही बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा काम मत कीजिए, 4 फुट बाय 4 फुट और 3 फुट खड्डा बनाइए, और छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर दीजिए। हमारा काम शुरू हो गया जल संचय का। तो ये जहाँ यूथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यूथ इसमें जुड़ चुका है। तो वही मेरी कोशिश कर रहा हूँ स्वच्छ भारत अभियान का इंस्पिरेशन लेके, कि हम लोग इसमें यूथ को जोड़ें। तो स्कूल कॉलेज एनएसएस एनसीसी ग्रीन क्लब सबको इसमें जोड़ने की कोशिश है, जिसने बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है, बिकॉज इन लोग जुड़ चुके हैं। बाकी शहरों में जल संचय करना आसान है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन करना आसान है। खेतों में हमारे पास छत नहीं होते। अगर मैं मुंबई की बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, हर शहर में इतना कंक्रीट बन चुका है, इतने छत बन चुके हैं कि छत का पानी बहने ना दें। छत का पानी एक बारिश के बाद एकदम साफ पानी आता है, वो पीने लायक पानी है। हम उस पानी को तुरंत हर घर जल संचय जो अभियान चल रहा है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, छत का पानी है, मेरा छत मेरा पानी, मेरा स्कूल मेरा पानी है, वही मैं सबको बोल रहा हूँ। और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप अपने हिस्से का, आपके पास जो पानी आ रहा है आप रोक के रखिए, आपका छत नीचे पानी जाएगा तुरंत। इसमें खर्चा कम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम 10 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बड़े से बड़ा। और बोरवेल तो हर घर में है आज के ज़माने में, ट्यूबवेल बोरवेल हैंडपम्प भी उसी कैटेगरी में आता है, कुएं

0: कुएं को लोग अक्सर बुझा देते हैं, कुएं में पत्थर डाल के बंद कर देते हैं। कुओं को आप लोग बिल्कुल बंद मत कीजिए। छत का पानी एक बारिश के बाद जो दूसरा पानी आ रहा है उसको कुएं में बिल्कुल, बस पाइप को तो आपको बस जो गटर में बाहर जा रहा था उसको आपने इधर कर दिया, पानी
1: डाइवर्ट करना है,
0: डाइवर्ट करना है।
1: आपने कुओं की बात की तो मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई, और वो है कि एक जमाने में तमाम छोटे शहर और गांव में कुएं, बावड़ियां, छोटे छोटे तालाब और इस तरह की वाटर बॉडीज हुआ करती थीं, जो अब खत्म होती चली जा रही है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, बावड़ियों को बुझा दिया गया, सुखा दिया गया, पत्थर भर दिए गए, कुएं खत्म हो गए, झीलें, तालाब। क्या महत्व है इनका? पुराने जमाने से लोगों ने इस बात को समझा था, तभी तो इन्हें बनाया था।
0: मैं आपको क्या बताऊं, इसका जवाब दूंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं हम सबकी गलती है
1: जी।
0: एंड मैं कुछ इस बारे में जरूर बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को उंगली नहीं बता रहा हूँ किसी की गलती। पहले हम लोग तालाबों से पानी लेते थे, तालाब छोटे पड़ने लगे, आबादी बढ़ गई, तो हम लोग कुआँ खोदना शुरू किए। कुआँ छोटा पड़ने लग गया, आबादी बढ़ गई, हम लोग बोरवेल पे आ गए। बोरवेल कम पड़ने लग गया, म्यूनसिपल्टी बोल रही कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में पानी पहुँचा दूंगा। अब वो भी कम पड़ने लग गया है क्योंकि हम लोग बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये अलग अलग एल नीनो और अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, जो तालाबें थे वो नेगलेक्ट होने लग गई है, जो कुएं थे वो ऑब्सलीट हो चुका है। आज मैं किसी को भी बोलूं कि चलो कुएं का पानी पिलाऊं, बोलेगा भैया मरना क्यों चाहते हो, मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाता है, भैया इसी से पी लो। आप बताइए, मैं मुंबई में हूँ, कोई कुएं का पानी पीने लायक है? कोई नहीं है।
1: कुएं कहाँ हैं?
0: अब जो कुएं हैं प्राइवेट है कुएं
1: जी।
0: अब जिस चीज का कोई उपयोग ही नहीं है हम उसको रख के क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विंटेज कार पड़ी हुई है, चलती भी नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको कबाड़ में ही डालना पड़ेगा ना
1: जी।
0: तो कुएं का मतलब हो गया ये तो कबाड़ है हमारे लिए, जिसका उपयोग नहीं है। हम 10 फीट बाय 10 फीट का खड्डा है, पड़ा हुआ है, कोई गिर के मर सकता है, उसका पानी खराब हो गया, कुएं का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है 10 सालों से, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, क्योंकि पार्किंग लॉट सोसाइटी में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं सोसाइटी को, तो कुआं रख के फ़ायदा क्या है? जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि कुएं का फ़ायदा है, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी या कोई बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा या हम आप इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कुआं बेकार है। वही हुआ तालाब का सिचुएशन। मैं बंगाल गया था अभी, मैं बेंगलुरु गया था, चेन्नई गया था, जो सिटी ऑफ लेक्स बेंगलोर को बोला जाता था, अब तो लेक्स तो नज़र ही नहीं आता है मुझे। बंगाल में आपको पता है मेरे दादाजी की शादी दादी के साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास एक तालाब था।
1: ओहो,
0: मेरी दादी की जो मम्मी थी उससे मिली थी, उन्होंने कहा था उस समय पहले जमाने में जिस लड़के के पास तालाब है मतलब वो क्वालिफाइड है। तुम डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, तुम्हारे पास तालाब है मतलब पानी है, तुम्हारे पास तालाब है मतलब मच्छी है, तुम जिंदा रहोगे,
1: क्या बात,
0: बाकी पढ़ाई लिखाई अपने जगह। तो वो कल्चर कहाँ गया है? तालाब इतना महत्व होता था, आज के ज़माने में लोग गाड़ी खरीदते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बैंक बैलेंस दिखाते थे, उस समय बैंक बैलेंस और एफडी यही होता था,
1: तालाब होता था जो।
0: तालाब है भाई इसके आदमी के पास।
1: हमारे शहरों के तालाब, कुएं, हमारी झीलें, बावड़ियां, ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई हैं
0: बहुत ज़्यादा। और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये भी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ नदी, नदी बचाने के लिए नदी के किनारे जो घाट बनाने से नदी नहीं बचेगा। नदी होता है नदी के पानी से, नदी होता है नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, वो नदी होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर पानी पीने लायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पियो पानी, बट कम से कम अगर इंसान पी सकता है तो बाकी जीव जंतु भी उसमें रह सकते हैं। नदियों में जो लाइफ आसपास होता था, नदियों के पानी में जो मछलियाँ होती थी, अलग अलग तरीके के जानवर होते थे, वो सब मरने लग गए क्योंकि नदी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है
1: जी।
0: तो बहुत ज़रूरी है, जब मैं नदी की बात कर रहा हूँ, तालाबों की बात कर रहा हूँ, दीघी की बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लेक हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं अक्सर मैंने देखा है अलग अलग म्यूनसिपलिटी के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के लोग, अलग अलग एनजीओज लोग, तालाब तो गंदा पड़ा हुआ है, तालाब में मतलब एक मछली नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन चारों तरफ बेंच लगा दिया, लाइट लगा दिया और वॉकिंग स्ट्रिप बना दिया है। वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, वो लेक रिजुनोवेशन नहीं होता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जल शक्ति मंत्रालय ने जो रूल बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है, उसको पढ़िए, उसका पहला पॉइंट ही है क्वालिटी ऑफ वाटर। उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज किया जा रहा है। जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जल शक्ति मंत्रालय में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हुए

0: में हमारे देश के सारे धुरंधर वहीं बैठे हुए हैं। सच बताओ, मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का। वो बहुत अच्छे सोच है उनका, वो सोच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सोचा आपके माध्यम से ये बात लोगों को बताऊं कि
1: बिल्कुल
0: आप, आपके पास अगर तालाब है, तालाब से आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं। मैनग्रोव की कोई इम्पोर्टेंस नहीं करता है,
1: जी जी
0: मैनग्रोव से कितना केकड़ा बनता है, कितने टाइप के खाना आता है। आज भी करोड़ों लोग दुनिया में मैनग्रोव से चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे लोग खाते हैं, खा के जिंदा हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनग्रोव कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक वाटर बॉडी में से आता है। उसी तरह हर तालाब को कंजर्व करना ज़रूरी है, ताकि उसमें से मछलियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की चीज़ें उसमें से मिलती है। वाटर बेस्ड बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स आ गए हैं आजकल, तो फ्लोटिंग फार्म भी शुरू हो गया है। और तालाबों का रक्षा करना हर किसान के लिए तो पहला धर्म होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी लाया है। वो पॉली पॉन्ड बना के देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। हर किसान को बोला गया है कि आपके पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें से आधा एकड़ में आप पॉली पॉन्ड बनाइए, बारिश का पानी उसमें संचय कीजिए, उसके अंदर जमा कीजिए। और न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल, टेक्निक्स हैं, लोग उसका बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट करोड़ों पॉली पॉन्ड बनाए हैं देश ने।
1: जी जी
0: मैं तो बोलूँगा कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक इंसानों का जो हिस्ट्री है, इतना बड़ा जल संरक्षण का अभियान कभी किसी ने न किया, न कभी होने वाला है, जो इस समय हमारे भारत देश में चल रहा है।
1: जी जल संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है कि आपके काम के कुछ और दिलचस्प हिस्सों की बात करें। एक आपके काम का हिस्सा है जो आम से जुड़ा हुआ है, ये
0: जी
1: क्या मामला है भाई? आम
0: जी
1: आदमी से आम तक?
0: बिल्कुल, आम आम नहीं, खास है।
1: अच्छा, आम के बीजों का संरक्षण, वो क्या मामला है?
0: जी, ये किसानों का लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, कि आज किसान इतना पानी के ऊपर निर्भर करता है। कभी ज़्यादा पानी आ गया, हमारा खेत बह गया, कम पानी आ गया तो खेत जल गया, हम ये बोलते हैं। इसलिए पैडी बेस्ड कल्टीवेशन जो हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं पे गलती कर रहे हैं। एक फार्मर पूरा निर्भर हो जाता है कि हम चावल का खेती करेंगे या ऐसा खेती करेंगे जो सिर्फ टॉप सॉइल से आता है, और जिसमें इतना इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर, क्या क्या डालना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, हमारा पेड़ कभी मरता नहीं है। एंड टॉप सॉइल, ऊपर का जो मिट्टी है 1-1.5 फुट का, इतना मैं बोलूँगा, इतना डेंजरस हो चुका है, जहरीला हो चुका है, कि ऐसा कुछ खेती किया जाए जो ज़मीन के सब सॉइल से आए। तो फल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो जड़ उसका नीचे तक जाता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहे हैं। और फल, रोटी खाने से अच्छा है कि आप फल खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं, एंड बातचीत चल रही थी, जब बात हो रही थी कि हम लोग फल मिशन फ्रूट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात में लोगों को ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप फल खाइए ज़्यादा,
1: जी,
0: आप चावल क्यों खाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, हम लोगों ने हमारा खेत जितना जंगल था काट दिया है। जंगल काट काट के हम लोगों ने सीधा ज़मीन कर दिया, और उसमें सिर्फ चावल बो रहे हैं, शुगर केन बो रहे हैं, जितने फल के पेड़ काट दिए हैं, जंगल ख़त्म कर दिया है। अगर आप किसी को देखिए, जब खेती ख़त्म हो जाता है, सब पीला पीला मिट्टी दिखता है, काला मिट्टी तो दिखता भी नहीं है, इट इज़ ऑल बैरन लैंड। इसको बचाने के लिए मेड़ पे पेड़ प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का।
1: जी,
0: गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपके पास जितना भी ज़मीन है, 20% ज़मीन पे फल का पेड़ लगाएं। और जब मैंने किसानों से पूछा फल का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो किसान बोले हमें तो कोई फल का पेड़ देता ही नहीं है साहब, हमें तो इमली का पेड़ दे रहे हैं फल के नाम पे, सिर्फ आंवला का पेड़ दे रहे हैं, हमें तो आम दीजिए तो मज़ा आए। तब मुझे समझ में आया, आम आम नहीं है, खास है।
1: क्या बात
0: किसी भी
1: है।
0: किसान को बोलिए आम का पेड़, बोले हाँ तुरंत, कभी नहीं मना करेगा।
1: जी,
0: आम हम लोग खुद भी खा लेते हैं, इतना ज़्यादा कि एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं, इतना
1: बिल्कुल।
0: बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। एंड आम एवरग्रीन पेड़ है, पतझड़ नहीं होता है आम में।
1: बिल्कुल
0: और मैं लोगों को बोलता हूँ, आम का पेड़ एक हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें हर टाइप का जंगली जानवर रहता है।
1: वाह वाह,
0: एक चिड़ियों का घोंसला भी दिखेगा, उसमें लेपर्ड भी बैठा होगा, उसमें शेर भी बैठा होगा, उसमें एक बंदर भी बैठा होगा, और सांप भी रह रहा होगा। तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है,
1: इसलिए आपने ये मुहिम शुरू की।
0: इसलिए मुहिम, मेरी कोशिश ये है कि फार्मर्स को आम का पेड़ दिया जाए। और सिर्फ आम का पेड़ तो ऐसे एक बहाना है, जब हम आम का पेड़ देते हैं तो उसके साथ 15 अलग अलग वैरायटी के पेड़ भी दिए जाते हैं।
1: फलों के
0: फल के हैं, पॉलिनेशन के लिए, इमली, वहाँ नीम का भी पेड़ दिया जाता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं, ताकि आम जो और बड़ा हो सके और नेचुरल तरीके से हो सके।
1: क्या बात है।
0: ये है इसका टेक।

0: अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहता हूं कि जो आपके कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो जरूर दीजिए, ताकि ये तमाम बातें सुनने के बाद जो लोग प्रेरित हों, जो लोग इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहें या किसी और को जुड़ना चाहें, वो आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल कीजिए waterheroofindia@gmail.com पे,
0: जी
1: एंड पिछले बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लिखिए कि आपका समस्या पूरे डिटेल में। सिर्फ हेलो लिख के भेजेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय जाता है। आपको जल संचय करना है तो कितना ज़मीन है, किस शहर से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में लिखिए।
0: जमीन का क्या साइज है,
1: बिल्कुल,
0: जमीन का क्या मिजाज है,
1: छत का क्या साइज है, अगर आपको घर में करना है, पानी की कमी है तो क्यों है, कितना है, थोड़ा सा डिटेल रहेगा तो हम और बेटर तरीके से समझा पाएंगे।
0: तो सुभजीत जी, आप सभी की ईमेल्स का इंतजार कर रहे हैं। आप ईमेल करेंगे तो इनसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने इलाके में पानी की समस्या का निदान कर सकते हैं। सुभजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर गाने की फरमाइश करनी होगी, फिर आपसे इजाजत लेंगे।
1: बिल्कुल जी, एंड इस बार गाना आप डिसाइड कीजिए।
0: देखिए, आप पानी पर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि माचिस फिल्म का पानी पानी रे गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप भारत के वाटर हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहिए और सार्थक काम करते रहिए।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।

ये था आज का मैटिनी शो। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग हैं और इस कार्यक्रम को जुबैर खान ने प्रस्तुत किया। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत और हाँ, वाटर प्रिजर्वेशन की दिशा में हम सबको काम आगे बढ़ाना ही है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफ्रीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में

राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार।

अनजान के बोल आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। डॉन फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। और आपको ये बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन लाया, कौन
0: लाया? आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और आवाजें किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

हसरत जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम यादों की महफिल, और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राहुल देव बर्मन का संगीत गोलमाल फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। घर फिल्म से ये गीत सुनिए।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम रोज एक टेक्स्ट या इबारत फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और इनमें वो शब्द शामिल होते हैं जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आज की इबारत या टेक्स्ट क्या है ये आपको पढ़कर सुना देते हैं और हमारे बहुत से साथी जो फेसबुक पेज पर हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने तो इसे पढ़ ही लिया है और अपने कमेंट्स भी देने लगे हैं। अगर आपके कमेंट्स आप कैसे भेजें ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फेसबुक पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की पेज पर जाना है, जिसके लिए आप www.facebook.com/vbsmumbai पर जा सकते हैं या अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और देवनागरी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देंगी जो विविध भारती के कार्यक्रमों से संबंधित सारी पोस्ट यहाँ आती है और रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट भी यहाँ आती है जिसमें कमेंट करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आज की इस कार्यक्रम की इबारत है कि कभी कभी जिंदगी निराशा की जमीन पर चलती है, कभी खुद पर रोना आता है तो कभी हालात ही ऐसे होते हैं। मन नकारात्मकता से यूं जुड़ता है या कहें कि यूं जूझता है कि ऐसा लगता है मानो ये नहीं होता तो कोई और गम होता। आंखों के आंसू सपनों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, भूली हुई यादों की परछाई भी हमारे आज को डराती है, पर क्या यही है सच्चाई? क्या इस नकारात्मकता से बाहर निकलने की नहीं है कोई राह? एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मिलेंगे कई हाथ तुम्हें थामने को, ये साथ मांग कर तो देखो। तो ये है हमारी आज की इबारत। और कई बार जीवन में ऐसे वक्त आता है जब हमें लगता है कि किसी भी तरह की कोई उम्मीद या कोई आस बाकी नहीं है।

हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, और हमने आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा ऐसा दुख भरा गीत है जो आपको बहुत पसंद है। भले ही आप निराश हों, दुखी हों या ना हों, कभी कभी हमें ये दुख भरे गीत भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे साथियों ने भेज दिया है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंसू भरी हैं जीवन की राहें, और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म दूर गगन की छाओं में के गीत के बोल हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिलवाले फिल्म में मुझे एक गीत बहुत पसंद है, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, एक बेहतरीन गीत है, तो इनकी पसंद ये गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सरल शब्दों में कहें तो सकारात्मकता जीवन को आगे बढ़ाती है और नकारात्मकता इंसान को पीछे की ओर खींचती है। सकारात्मक सोच में हमेशा आशावादी रवैया, समाधान पर ध्यान और दूसरों की मदद करने पर होता है, जबकि नकारात्मक सोच में निराशावादी रवैया, शिकायत करने और ईर्ष्या की भावना रखना और हिम्मत हारना ये होता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी ने कहा कि निगेटिविटी, निराशा से हरदम दूर रहना चाहिए, खुद को पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं, समय संजोग की बात है, खुश रहना चाहिए, जो पल खुशियां दे उसे याद रखना चाहिए और उस पल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। गीत वो कह रहे हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। हमारे एक और साथी हैं कह रहे हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इस तरह का रवैया हमें रखना चाहिए। एक और साथी कहते हैं कि आज गद्यांश में गम, आंसू, यादें, निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से मन को सकारात्मक

ताकि और कैसे ले जाया जाए, यही बात कही गई है। गम, निराशा, उदासी और अकेलापन जीवन के अनचाहे मेहमान जरूर हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। निराशा के क्षणों में कृतज्ञता मन के अंधकार को मिटाने वाला सबसे अचूक दीपक है। सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो आपके भीतर सोई हुई रचनात्मकता को जगा दे और अपनी जीवन ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। तो बहुत सी बातें हमारे साथी भेज रहे, बिल्कुल सही बात है कि नकारात्मकता या निराशा की भावना अक्सर आ सकती है हमारे मन में। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आ सकती हैं, कभी कुछ परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं जो इस तरह की नकारात्मकता हमारे मन में ला देती हैं। कभी कभी कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी इस तरह का भाव हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो इसलिए भी इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर कभी कभी निराशा या ऐसा नकारात्मकता लगे तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा लगता रहे एक लंबे समय तक तो इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी हमें जांचना ज़रूरी है कि क्या आपको पता है कि ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है और कौन है इसके संगीतकार। तो बताइए गीत सुनकर।

माय लव फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत। तो संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथियों ने तो ये भी बताया कि शशि कपूर पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारी एक और साथी कहती है कि मैं बहुत खुश मिजाज नेचर की हूँ, हर समय हंसती बोलती रहती हूँ, पर गीत मुझे सभी दुखी वाले ही पसंद हैं। भाई ये बात तो एक अलग ही चीज है कि भाई दुखी गीत पसंद है लेकिन दुखी रहना पसंद नहीं है तो फिर चलाया जा सकता है। वैसे हमारे कुछ और साथी कह रहे हैं कि भाई मन की बात तो सबसे कहना मुश्किल होता है, और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं दुख के बारे में बातें जब कर रहे हैं तो अलग

अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई दुखी होना तो सभी के लिए स्वाभाविक है, सब हमेशा खुश तो नहीं रह सकते, लेकिन दुखी ही बने रहना ये एक प्रवृत्ति है जिसे हम बदल सकते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से गीत पसंद है। वैसे एक साथी ने कहा कि भाई आज की भारत में सभी गाने बहुत दुख वाले हो सकते हैं, पर कभी कभी सैड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जीवन सुख दुख का मेला है आज के शब्द उन्होंने चुने हैं, और कहा है कि भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, कोई हमदम न रहा, ये वो तेरे प्यार का गम, ये भी इनकी लिस्ट में शामिल गीत था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, और मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह, ये गीत इन्हें पसंद है। तो जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, इस गीत के बोल को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमेशा क्या किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जिससे मिलने के बाद हम उदास हो जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या वो हमें बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं हमारी, या किस तरह से हमारे साथ उनका व्यवहार होता है जिसकी वजह से हम इस तरह से उदास हो जाते हैं, या उनकी उदास प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उदास होते हैं। तो इस बात पर भी गौर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मित्रों की तरह मिलते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उन्हें आलोचना करने की इतना आदत होती है कि वो जब आलोचना करते रहते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो सामने वाले को दुख दे रहे हैं, और हम उनकी बातें उनके विचार अपने मन में ले आते हैं और दुखी रहने लगते हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत गीत पसंद है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। और हमारे एक और साथी कौन रोता है किसी की बात पर, इस गीत के बारे में उन्होंने गीत को ही लिख भेजा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी खुद पर कभी हालात पे रोना आया, और सही कहा है गीतकार ने कि कभी कभी अपनी ही नादानियां, बेवकूफियां, अपनी गलतियां और किसी के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा लगाव पर उनके व्यवहार से मन आहत होता है। तो ये गाना बहुत याद आता है कि कौन रोता है किसी और के आगे, उन्होंने लिखा।

होता है और मन निराश होता है। क्या कभी ऐसा लगता है? बहुत से साथी कहते हैं कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखने की वजह से हमारा मन कई बार दुखी होता है। क्या सच में ऐसा होता है कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखना या दूसरों से ज्यादा उम्मीदें करना, ऐसी उम्मीदें जो हमारी उम्मीदें हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं? तो जरा सोचिए और इस बारे में बताइए। तब तक हम आपको गाना सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला, और इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और आवाज किसकी है।

चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हालांकि जो चीजें नहीं पूछी थी उसका भी सही जवाब दिया है। और इस बात से खुशी तो हुई ही जाती है कि हमने जो पूछा, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जानकारियां हमसे बांटते हैं और साथ ही अपने जीवन की बातें भी हमसे साझा करते हैं। हमारे साथी ने कहा कि आज की भारत में जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, जीवन की राह बहुत कठिन है, खुशी कम, दर्द बेशुमार है, दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि आंसू बहाने का समय नहीं, कोई भी कदम उठा, रास्ता बना, कोई साथ चले ना चले, कहीं तो मंजिल मिलेगी, जैसे नदियां कल कल बहती रास्ता बना लेती हैं। गीत उन्होंने बताया है, किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये गाना उन्होंने अपनी पसंद का इसमें शामिल किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब जिंदगी की जमीन बंजर और निराशा से भरी लगने लगती है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि तकलीफों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों ना हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह की सकारात्मकता जब हम अपने अंदर रखते हैं तो वो सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गम और आंसू की बातें और गाने, इंसान अपने मनोभावों को कभी व्यक्त कर पाता है तो कभी नहीं, खासकर जब बात गमों की हो, वो मन ही मन अपने हालात से जूझता रहता है और तब तन्हाइयों में वो दर्द आंसू बनकर

0: लगता है किसी को पाने के बाद खोना और मिलने के बाद बिछड़ना। कहते हैं कि जब दर्द आंसू से छलकता है, मतलब इंसान जब रो लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। दर्द भरी यादें कभी तो ताउम्र सताती हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने मनपसंद कार्य में मन को लगाए। समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा या गीत संगीत सीखे, गुने सुने, गाएं व्यक्त होने से उस दर्द को कम कर सकते हैं। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि राहें बंद नहीं होती, बस नज़र का दायरा कभी कभी छोटा पड़ जाता है। एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत हो, जिंदगी का पासा पलट देती है ये हिम्मत। जिंदगी के कैनवास पर अगर आज काला रंग गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रंग खत्म हो गए, उस ब्रश को उठाने और एक नया रंग भरने की देर है। तो सकारात्मकता से भरी ये संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं और हम आपसे यही जानना चाहते हैं किस तरह से आप सकारात्मकता से सामना करते हैं अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कहने की भी दुख ही होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, वो भी चलिए कोई बात नहीं अगर ये काम एक आध दिन हो रहा है, लेकिन लगातार अगर यही हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि बाहर निकलें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा या आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से, किस परिस्थिति में हैं, किस निराशा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो बात सुनते हैं। और सुख दुख की बात अगर हम कहें तो भाई सुख दुख से संबंधित ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत आपको सकारात्मकता का संदेश तो देगा ही। और फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताने वाले हैं।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और बात हो रही है कि जब निराशा हमें घेरती है तो हम क्या करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए किसी प्यारे से दोस्त या किसी अपने का थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा सहयोग, तो हमें लगता है शायद कोई इंसान इस परेशानी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें दौलत से नहीं बात करने से भी संभल जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभार मन किसी जाने अनजाने दुख से या यूं ही निराश होकर उसी में डूबता चला जाता है, कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में उस जगह से उठकर थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी चहलकदमी करें, एक दो लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातें करके मन को बहलाएं, मन को कहीं और लगाएं तो कुछ मन हल्का हो जाता है, वरना जितना डूबोगे मन इतना ही डूबता जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कभी कभी वो बात हमारे मन से निकलती ही नहीं, तो जरूरी है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें, या उठकर बस एक चार चार पांच कदम भी अगर हम चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस विचार से निकल पाते हैं और कुछ और भी सोच पाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत हमें जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं के साथ ही सकारात्मक सोच की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय कर रही है, किंतु सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई सकारात्मक पहलुओं के करीब अवश्य ही है, और जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमें सकारात्मक सोच की तरफ इशारा किया करती है, हम उससे ही सहायता उसकी सहायता से ही अपनी सकारात्मक सोच की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह हमें सकारात्मक सोच से भी बचते हुए उस अद्वैत आनंद की इबादत से ही ओतप्रोत रहते हुए संदेश देते हुए स्पष्ट करता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी जो भी वस्तु है वो गोविंद यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और उन्हें ही हम समर्पित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही जीवन के एक पहलू हैं और इन्हें बदलते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह मन के विचारों को भी एक ही तरफ एक ही जगह पर बचाकर या जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि निराशा हर किसी के जीवन में आती है, अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा उस निराशा उस नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए, और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

सीमा फिल्म का ये गीत सुना। और इस फिल्म में और इस गीत में नजर आती हैं नूतन शुभा खोटे के साथ। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म चित्रलेखा के गीत के बारे में उन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की भारत का सारांश है कोई क्या जाने पीर पराई। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये गीत जब दिल टूटता है तो आशिक लोग गाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और गीत के बारे में ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मात्राधिक आशा ही कष्ट का कारण है, सबसे कष्ट और निराशा अपने कार्यरत आत्मनिर्भर बच्चों के फिजूल खर्ची से होता है। 8,000 के जूते क्या मुकुट है जो सिर पर पहनना है। भाई देखिए, ये भी एक कारण हो जाता है कभी कभी, जब हम ये सोचते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी। हो सकता है किसी और के नजरिए में उस चीज की उन्हें जरूरत हो सकता है, वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों, या कुछ बातें हों उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी है। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है, जिसका निवारण हमारे हाथ में ही होता है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि जब मन दुखी उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिन दुनिया।

बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहना है कि अपने से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देखकर मेरा दिल गहराई से भर उठता है। जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूं तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है। मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की एक गहरी परत सी छाई रहती है। सोचता हूं कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता। आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ कर लेना हमारे बस की बात नहीं है, और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसलिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कहने कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं, मुझे गले लगा लो। जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है। जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर सिंह फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम जुबिन नौटियाल ने सिखाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि निराशावादी लोगों की जगह हंसमुख स्वभाव वाले लोगों के साथ समय गुजारना चाहिए। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छी संगति हो या खुश मिजाज लोगों के साथ अगर जब हम होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी जो ये हम सोचते हैं कि निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये जो दिन भर ये उदास रहते हैं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वक्त में ही उस व्यक्ति को ये लगता है कि जब हम निराश हैं या हम उदास हैं तो लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं और उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ हैं उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक ऐसा ही गीत। आपको ये बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हमें, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाहे दुख हो या खुशी, एक गीत तो हम हर समय सुनते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और ये गीत इन्हें बहुत पसंद है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लाखों तारे आसमान में, ये गाना उन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी का कहना है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये गीत उन्हें पसंद है। हमारे एक साथी ने तलत महमूद के गीत उन्हें पसंद है ऐसा कहा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। एक साथी कहते हैं मेरे महबूब कयामत होगी, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे और साथियों ने गीत कौन सा बताया बताएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धूप बहुत है राहों में, परछाओं भी कभी मुस्कुराएगी, गम का मरुस्थल लंबा सही पर हरियाली लौट कर आएगी। तारे सुन सुनकर थके पैर अब ताने सुन सुनकर थके पैर अब मंजिलों की ओर बढ़ेंगे, सुख दुख के ताने बाने में सहयोग के धागे बुन लेंगे। ये इन्होंने लिख भेजा है सकारात्मक लघु काव्य आज की भारत से संबंधित। और उन्होंने कहा कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। इस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निराशा या नेगेटिविटी इंसान को जब आती है, उसके मन को यह एहसास होता है कि अब मुझे हर कोशिश कार्य में असफलता मिल रही है। पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से मिलती है, तो वह पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मंदे तो काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो, तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल, या रहमान का संगीत, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतने फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे एक साथी कहने कि वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है। जब भी कभी उदास या दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूँ, तो शादी से पहले मेरी माता जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्म पत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती, और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती कि पापा जी हमें बेटियां ना समझ कर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना। तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे हैं सुख और दुख तो दुख छाव धूप छाव की तरह है, जो जीवन में आते ही रहते हैं, जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूँ और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा, ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुखांत फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द दिया का एक गाना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है। हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और जाने तो या जाने ना फिल्म का जो गीत हमने सुनवाया था, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही तो मुकेश के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है, इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तो या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

छिछोरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। और सुरीला सफर कार्यक्रम से बस लेते हैं इजाजत।

0: आइए सुने त्रिवेणी।
1: ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाएगी। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आज आह्वान किया है। बंद को राजद समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य भर में सभी संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। राजधानी पटना में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिला मुख्यालयों में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पटना के बीआईटी मेसरा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 11,464 करोड़ रुपए की लागत से 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया। इन योजनाओं से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्रिपरिषद के कई सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आज पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया। साथ ही वेटनरी कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत एसी और नॉन एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक आज पटना में पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे अधिक 53.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास एक यात्री बस और टैंक लॉरी की टक्कर में बस पर सवार 22 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज सासाराम मॉडल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने विभिन्न मामलों में अभियुक्त 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा जिला अधिवक्ता संघ की द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज मतदान कराया जा रहा है। देर शाम मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत आज नई दिल्ली में CJP के नुमाइंदा वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। यह मीटिंग दोपहर 3:30 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। मीटिंग में इम्तहान के निज़ाम में सुधार और पेपर लीक के वाकयात को रोकने के तदाबीर पर नुमाइंदों के मुतालबात पर बात होगी। इससे पहले मरकजी वज़रा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP के नुमाइंदा वफद से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तहान के निज़ाम में सुधार से मुतल्लिक से CJP के मांगों को संजीदगी से लिया है। नीट पेपर लीक मामले के सिलसिले में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों समेत मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने बिहार बंद की अपील की है। बंद को RJD समेत मुख्तलिफ

निज़ाम में सुधार से मुतल्लिक से CJP के मांगों को संजीदगी से लिया है। नीट पेपर लीक मामले के सिलसिले में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों समेत मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने बिहार बंद की अपील की है। बंद को RJD समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने भी अपनी हिमायत दी है। बंद के पेश नज़र रियासत में तहफ़ुज़ के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरी रियासत में सभी हसास मकामात, रेलवे स्टेशनों, सरकारी इदारों पर इजाफी पुलिस फोर्स और क्विक रिस्पॉन्स टीम को तैनात किया गया है। राजधानी पटना में किसी भी हालात से निपटने के लिए नीम फौजी दस्तों की कई कंपनियों को भी तैनात किया गया है। इधर हमारे नुमाइंदों ने बताया है कि मुख्तलिफ जिला सदर दफातर में तलबा अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में NDA हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पटना के BIT मेसरा ऑडिटोरियम में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला ने 11,464 करोड़ रुपये की लागत की 2,476 तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इन मनसूबों से रियासत में बुनियादी ढांचे को फ़रोग, तालीम, सनअत, सियाहत, टेक्नोलॉजी और रोज़गार के शोबे को नई रफ्तार मिलेगी। प्रोग्राम में नायब वज़रा आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत रियासती वज़रा, अराकिन कानून साजिया और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। वहीं एक दिगर प्रोग्राम में वज़ीर आला ने आज पटना के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपये की लागत से तामीर जदीद तरीन इमारत का इफ्तिताह किया। साथ ही वेटनरी कॉलेज अहाते में वज़ीर आला ने प्रधानमंत्री ई बस सर्विस के तहत AC और नॉन AC बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी की कानून साजिया पार्टी की मीटिंग आज पटना में पार्टी सदर दफ्तर में तलब की गई है। पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन की सदारत में होने वाली मीटिंग में तंजीम से मुतालिक मौजूदात पर गुफ्तगू होगी। मीटिंग में वज़ीर आला सम्राट चौधरी और दीगर सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्याल शेयर करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां एडिशन होगा। प्रोग्राम का नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके फौरी बाद मैथिली जुबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी नशरिए को दोबारा रात 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मानसून की सरगर्मी से रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद समेत रियासत के शुमाल मशरकी और जनूब मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का भी अंदेशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, मशरकी और मगरबी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई अजला में तेज़ बारिश दर्ज की गई। पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे ज़्यादा 53.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना इलाके के तहत टोल प्लाजा के पास एक मुसाफिर बस और टैंकर की टक्कर में बस पर सवार 22 लोग जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। अररिया जिले के मुख्तलिफ थाना इलाकों में खसूसी मुहिम चलाकर पुलिस ने मुख्तलिफ मामलों में मुलजिम 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कसीर मकदार में नेपाली और गैर मुल्की शराब, नशीली अशिया और दीगर काबिल एतराज सामान बरामद किए गए। शेखपुरा जिला बार एसोसिएशन के 2 साल इंतखाब के लिए आज पोलिंग कराई जा रही है। देर शाम गिनती के बाद नतायज का ऐलान होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: AIR at 90. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अरिक्षुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.NATIONALINSURANCE.NIC.CO.IN यानी www.NationalInsurance.NIC.CO.IN। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2026। रेलवे भर्ती बोर्ड सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.indianraialways.gov.in यानी www.indianrailways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य संबंध वर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अरिक्षुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और CJP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर

0: सागर, चिराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चिराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के

0: तीन महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए चार प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री

0: स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGB के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे फारूक कैसर के बोल्ड शिकारी फिल्म के। इस गीत में आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि शाम 4 बजे आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकेंगे फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

जी एस कोहली का संगीत बद्ध ये गीत आपने सुना। नमस्ते जी फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया और अनजान के बोल थे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म से ये गीत। मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल उषा खन्ना का संगीत कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में ये अगला गीत। छोटी बहन फिल्म के इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया।

छोटी बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुबीर सेन और लता मंगेशकर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक्मे में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और कार्यक्रम सदाबहार नक्मे में आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।

0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: तो कार्यक्रम मनचाहे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और दतरेंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर फिल्म से गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आपने सुना, मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर, जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं, उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल, जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत सुनिए। आवाज तलत महमूद की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत, फिल्म लीडर से ये गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। मछली गोदाम, कैदी मुड़ा, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।
1: सालम।

0: माँ फकीरे माँ फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे माँ फकीरे माँ फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे
1: अपने दुम में बांधे
0: अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला मैं तो साहब बन गया Attention! साला मैं तो साहब बन गया ए साहब बन के कस

0: तेली
1: क्या गंगू तेली,
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो।

0: का।
1: सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा के आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ, महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंग इज किंग फिल्म का ये गीत। मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान, सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है। चोरी चोरी ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: प्रिय महोदय, आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? यस सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट्स ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आप किस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं? जनाब चंद्रा साहेब, हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
4: वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
4: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
3: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन।
4: हाँ?
3: मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीशचंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
4: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
3: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया है। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
2: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
3: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों अख्तर? होगी।
2: ओह जनाब अख्तर साहब, 100 टाइम
4: आधा वर्ष मियाँ।
2: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
4: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातम पुरसी करने चला आया था।
2: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातम पुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातम पुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
4: तो और करता भी क्या है?
2: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
3: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं, तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है,

0: समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
1: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
2: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
1: जी हाँ, पर अकेले नहीं बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
0: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
2: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
1: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो, तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
0: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
2: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
1: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
2: करेक्ट।
0: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर चलो
1: चलो चलो।
0: रितु, क्या मंगवाए?
3: बस कॉफी।
0: बैरा?
4: जी सर।
0: दो कोल्ड कॉफी।
4: बहुत सर।
3: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
0: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
3: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
0: जरूर मिलती है।
3: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
0: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली है।
3: अच्छा
0: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती है? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
3: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
0: क्योंकि मैं न जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
3: तुम मजाक कर रहे हो।
0: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
3: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है, ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
0: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
3: फिर वही बात।
0: रीतु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
3: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
0: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
3: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
0: साल दो साल, ये सजा क्यों?
3: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
0: तब तक मैं क्या करूं?
4: सर बिल।
3: तब तक बिल चुकाओ।
5: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
6: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
5: आसान होता तो तुम्हें यह नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।

0: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
1: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
0: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है। गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
1: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
0: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे। अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
1: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
0: जी,
1: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
0: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
1: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम में लाओ।
0: वो क्या मेजर?
1: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंती लाल को वही तो दल में लाई थी।
0: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
1: यू आर राइट एंड दैट मीन्स मनी।
0: ऑफ कोर्स,
1: ये लो 100 रुपये, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
0: जी
1: अरे सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
0: आप फिक्र मत करें मेजर।
1: ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक।
0: थैंक्स।
2: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
3: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
2: अरे यही था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
3: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
2: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे। अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
3: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
2: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं, बेकरारी के हैं।
3: मैं समझा नहीं।
2: बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
3: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
2: वो कैसे?
3: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से दोहा ले सकूंगा।
2: अच्छा,
3: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
2: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
3: यही तो समझ में नहीं आता, जब ये बात उठाता हूं तो रीता रुकने को कहती है।
2: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूं क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब ना कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती।
3: छोड़ो इस बात को।
2: पर हरीश तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
3: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता।
2: लेकिन वही रीता आप तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
3: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो, उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
2: ये कारण अख्तर तो नहीं?
3: अख्तर?
2: हाँ, उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता हूं।
3: नहीं, वो नहीं हो सकता, रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
2: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी, नारी इतनी सरल नहीं होती।
3: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है, स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
2: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
3: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
2: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे

0: अधिकार। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
1: ऐसा चलो।
0: चलो
2: हरीश ऐसा
1: नहीं नहीं सचिन।
3: हेलो हरीश। हाय सचिन।
1: हेलो हेलो।
3: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
1: हाउ डू यू डू।
4: हाउ डू यू डू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अक्दा साहब से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
3: कॉफी? श्योर श्योर। क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है?
1: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
4: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
5: मैं
3: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
4: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
1: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
3: दैट्स गुड।
4: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र।
3: बैठिए। बैरा बैरा।
6: जी साहब।
3: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
4: जी नहीं।
3: तुम कुछ लोगे हरीश?
1: मैं कुछ नहीं लूंगा।
3: ओके बस तीन गरम कॉफी लाओ बेरा।
6: अभी लाया सर।
3: हरीश अलका बढ़िया कहानियां लिखती है, गाना नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
1: दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन।
4: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
3: भाई ऐसी बात नहीं है।
6: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
3: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
1: क्या हुआ?
3: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
1: चलो चलो हम भी चलते हैं।
3: नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
4: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
1: मैं छोड़ाऊंगा।
3: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
3: ओके
7: रितु, हरीश आखिर गायब कहां हो गया?
4: क्यों क्या हुआ पापा?
7: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं, थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
4: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
7: हाँ साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
4: लड़की खराब होगी पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
7: हरीश कितना बहक सकता है यो शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
4: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
7: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा, और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका, वो एक्टिंग करती है नाचती है गाती है।
4: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
7: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन DSP मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है, कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
8: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी, अगली कहीं की?
4: मैं रोका रही हूं,
8: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
4: पापा मैं आपको दोष नहीं देती।
8: दोष मेरा है, मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज आज तेरी माँ जिंदा होती

0: तो शायद ये फूल न होने देते। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
1: पापा, पापा हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था।
0: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
1: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
0: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कहाँ तक कुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने करवाहट पैदा कर ली। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौर तलब है कि इंकलाब से ज्यादा नई बुखियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से इंकलाब कर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर की दूर रह जाए।
3: देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते।
0: मेरी जिंदगी में कुछ खाली प्याला है। लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: जहन्नुम में ले आए हो।
1: इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत है। हूरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
2: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
1: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
2: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
0: अनीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहले एक्शन में तुम्हारा यह हाल है?
2: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच बुझदिल हूं।
0: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ली आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
2: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
0: तुम

0: तुम उसे नागिन कहते हो, तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश तुम पाखंडी हो।
1: शट अप,
0: जुबान संभालो हरीश, पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर उगलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
1: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है
0: हरीश।
2: अब तक ये सब क्या है?
0: हरीश गद्दार है मेजर।
2: क्यों हरीश, क्या बात है?
1: मेजर मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
2: तुम्हें यह समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
1: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
0: ये बकता है मेजर।
2: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
1: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए।
0: हरीश आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
2: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
0: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
2: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे
0: मेजर।
2: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की
0: मेजर।
2: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
1: अख्तर तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
0: हाँ, मैं जलील हूँ, मैं जलील हूँ, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
3: Uh-huh.

0: ओहो, कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ?
2: खून?
1: अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चल

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशा को तो जल्दी चली आओ। अच्छा
0: अच्छा अच्छा मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूं। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ, वापिस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल।
3: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू जी।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारतीय आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी,
2: जी
3: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक, डफ, मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
2: जी। जी
3: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शौकिया फिल्म से
2: जी।
3: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कस्तूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए
2: जी।
3: 2006 में मेरा पोता सोहेल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
2: जी।
3: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत
2: जी,
3: क्षेत्र
2: जी,
3: में
2: जी। बिल्कुल सही कहा आपने,
3: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवी पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है
2: जी, जी।
3: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
2: जी,
3: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक
2: जी।
3: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा। जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
2: बिल्कुल।
3: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे, फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर, सिंगर, एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे, फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार, मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे, छठा मैं, छठी मतलब छठा मैं था दिलीप सेन। तो करते करते निकला और एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
2: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए

0: विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
1: जी।
0: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो
1: अभी
0: कहेंगे
1: छठी हो
0: छठी
1: जाएगी।
0: पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा
1: जी
0: योगदान रहा
1: हाँ
0: है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहाँ
1: जी,
0: से हुई?
1: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की कलकत्ता रेडियो से। वहाँ पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ
0: अच्छा,
1: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया,
0: मतलब टैगोर साहब मतलब रविंद्रनाथ टैगोर
1: रविंद्रनाथ
0: साहब।
1: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में कुछ
0: अच्छा।
1: साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर, वहाँ पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए करेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में, क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे,
0: जी।
1: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछें होती थी और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का,
0: जी।
1: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था,
0: हाँ
1: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें मुझे फख्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी,
0: खेमचंद प्रकाश
1: वो भी
0: जी।
1: हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से,
0: जी
1: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए हैं कन्हैयालाल सेठिया जी,
0: बिल्कुल
1: वो भी मतलब हमारी धरोहर हैं ये राजस्थान
0: बिल्कुल।
1: की।
0: और वही आपके सुजानगढ़ के पास, चूरू से थोड़ा पास, बीकानेर शहर से जो है पंडित
1: हाँ,
0: भरत व्यास,
1: भरत व्यास जी है, गुलाम
0: गुलाम
1: गुलाम मोहम्मद जी हैं,
0: मोहम्मद साहब।
1: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फख्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे
0: हाँ,
1: कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो वो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है,
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही
0: संगीत
1: है,
0: है। जी,
1: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी,
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत। और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना, तो मेरी मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा
0: जी,
1: कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी, अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं
0: जी,
1: और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी,
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक धिना के दिने दिन तिन्ना दिने ताक। अब ये दिन ताक धिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टाउ, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक धिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर जोर शोर अर अर, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये एक गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारी दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी।

0: खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ।
1: जी।
0: क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर
1: जी
0: जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एस डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी। जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
1: जी।
0: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि
1: बिल्कुल।
0: हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पे संगीत बदलता है,
1: बिल्कुल।
0: वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
1: वो
0: जो
1: वही।
0: हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज़ छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी।
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति आ गई।
0: क्रांति आई और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है, और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म मिली?
0: देखिए फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं
1: हाँ
0: आपका।
1: हाँ बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था,
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे या
1: हाँ।
0: कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था। तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी।
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ एज ए मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते 3 4 साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीज़ें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला तो वो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक
1: जी
0: लेने
1: जी
0: जाएंगे या
1: जी
0: पैसे दो
1: बिल्कुल
0: के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल।
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये परकशन में नंबर 1 हैं, इंडिया के एक माने हुए
1: जी
0: परकशन्स हैं, जो कि रिदम में मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं।

0: अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं, जो
0: क्योंकि
1: सच्चाई
0: जो
1: है।
0: उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोला क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते। मैं बोला यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150, 200, 300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था। बोले ये खामा का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मर्तबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे,
1: अच्छा गीतकार,
0: गीतकार। तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो
1: जी।
0: तो मैं असद वालिद साहब को बोला मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा, मुझे बताया नहीं कहां ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है। बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें। बोले यही बच्चे। बोले ये बच्चे सुनाएंगे, ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे म्यूजिक डायरेक्टर, और वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया, हमको एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई
1: जी।
0: तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़ी की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है
1: जी।
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं, मगर कंपोजिशन में बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुराना माने तो सुनाना चाहूंगा,
1: बिल्कुल।
0: हमने ये दिल्ली के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते
1: जी।
0: बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर। बोले ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला। बोले ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी। तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कू आई लव यू।

0: तुनक धुन दु धुन दुनक धुन दुन।
1: बिल्कुल
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है?
1: क्या है,
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा?
1: जैसे इलू इलू क्या है, ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए, ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं
1: अपना ही
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ही रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर
0: जी
1: बड़े भाई साहब को जानते थे, तो
0: जी
1: वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नौशाद साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल, डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नौशाद साहब को बोला कि नौशाद साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी ने बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो वो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अभी इसको सब में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है
0: अच्छा,
1: ये, जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को
0: हाँ
1: सिखाया
0: हाँ
1: जाता है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है, ये
0: जी
1: 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो
0: हाँ
1: इस तरीके से वो रहा, तो आशा जी इस बात को नोट करती रही, और उनको लगा, उन्होंने
0: कि एक नई बात है।
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है, तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और
0: जी
1: मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा, मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया,
0: जी
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया,
0: जी
1: आईना और ये दिल लगे में।
0: जी तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर
1: बैनर
0: मिला यश
1: मिला,
0: चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला,
0: मौका मिला, बहुत बड़ी बात थी आपके
1: बहुत
0: लिए।
1: बड़ी नहीं, ड्रीम
0: तो
1: था, सपना
0: ड्रीम
1: था।
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहले पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी, आज
0: अच्छा
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी, फिर
0: अच्छा
1: ऊपर करके कैसा बड़ा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी।
0: जी
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक दिन आगे दिन दिन तिन्ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया।
0: जी
1: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था,
0: अच्छा
1: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो

0: आपको कट करके फिर उनके रूम में,
1: जाके ही।
0: जहां पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े। तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा, ठीक हो गया? मैं बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई? क्या रहा, जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं, सुर कम नहीं लगा, वो मींड रह गई। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद के ले जा, ताक दिन आगे दिन। बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था? मैं बोले सजना वे मेरे नींद के ले जा ताक, तो मैं बोला ये ले जा ताक। अच्छा, हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता, इतनी
0: नम्रता के
1: विनम्रता।
0: अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का
1: नहीं।
0: लौंडा हूं, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ।
1: लेकिन एक महान
0: मगर उन्होंने
1: कलाकार।
0: ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ।
1: बहुत सुंदर
0: तो
1: गाना।
0: ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूं दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल
1: ये
0: लगी,
1: दिल लगी।
0: तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजे नाम। तो
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी आफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं, ठीक है दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था, लगी

0: से दिल लगी, सुना उन्होंने मम्मी इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से। बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं।
1: हाँ
0: तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यारे का मारा, घर का पता दो दिल
1: दिल
0: है
1: है
0: तुम्हारा,
1: तुम्हारा।
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है नया स्टाइल है गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग
0: था।
1: गया। हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल के करीब है।
1: जी
0: बोला अच्छा, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ जब कोई गाना है, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था।

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: 2 मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती हो तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटे। बोले नहीं, ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद

0: देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया,
1: क्या
0: गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे। तो
1: जी
0: यश जी बोला, यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चालू कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही
1: गाने,
0: समय में चार गाने गाए हूं।
1: क्या
0: ये मेरे
1: बात
0: लिए
1: है,
0: बहुत
1: ये
0: नसीब
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। और
1: जी
0: मैं समझ रहा हूं शायद दुनिया में ये पहला पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए।
1: जी

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती थी, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है,
1: अच्छा,
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूं कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्मअप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाने गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन।
1: बिल्कुल,
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे, तो वो अच्छा लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में, तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे।
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता
1: था, गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं,
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा जी
0: बोलते हैं उनको, उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: रास्ते हैं
1: क्या
0: ना,
1: बात है, बहुत
0: तो ये
1: सुंदर।
0: गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी।
0: जब सैम दोनू सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबलू पची जिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, तो उसका एक गाना था,

0: बहुत गहरा गाना
1: अब
0: था
1: ये
0: ये।
1: गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते,
0: जी
1: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो पौधा है, जो उनकी पोस्ट है
0: उसको भी रखना है।
1: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, हम बोले

0: मैं 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ? नहीं, मैं मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है,
1: जी।
0: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में मतलब जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाजे से ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप लोग? हाँ हाँ सर कर सकते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तू मुझे मैं छुपा लूं, ओ, तो ये मुर्गी रिमेंड ये भी आ सकती है शायद। हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते
1: जी,
0: हैं,
1: साइकोलॉजिकल।
0: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसे फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो फिर अटक गए तो अटक गए।
1: अटक गए
0: तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और
1: थे, बिल्कुल।
0: काबिल हैं।
1: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का।
0: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है,
1: जी

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की

0: सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनाहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 5:05 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद यानी अपराह्न के 5:10 पर सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर अपराह्न में सुनेंगे हमारी बात युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़ी। इसका विषय होगा नदियों और तालाबों में तैरने वाले बरतें सावधानियां, और बातें होंगी भारतीय सेना के शौर्य की याद दिलाता कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। श्रोताओं शाम 6 बजे सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, और 6:05 पर सुन पाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा 6:10 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत सुन पाएंगे 6:40 पर, और सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुनेंगे 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से सुनेंगे 7:25 पर, और साप्ताहिक विधान मंडल समीक्षा आकाशवाणी के पटना केंद्र से ही 7:50 पर। इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

शाम 8 बजे। फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद का समय होगा शाम 8:15 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुन पाएंगे शाम 8:30 पर। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 8:45 पर। पुनः लौटेंगे आप सबों के सेवा में रात्रि के 9 बजे। भोजपुरी लोकगीत

रात 9:15 पर और कार्यक्रम आज के फनकार विविध भारती से रिलीज किए जाएंगे रात 9:30 पर। रात्रि 10 बजे रसरंग कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने का समय होगा रात्रि 10:30 पर और मौसम पूर्वानुमान लगाएंगे रात्रि 10:55 पर। रोजाना की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। सभा का समापन 11:10 पर।

अभी आपने आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त जानकारी ली आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम सुनेंगे कार्यक्रम वंदन से कुछ भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं आराधना एल्बम से एक खूबसूरत सा भक्ति गीत कमल बारोट की आवाज़ में। शादाब ने इस गीत को लिखा है, स्नेहल भाटकर ने संगीत दिया है। एल्बम है आराधना। तो ये सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन।

कार्यक्रम भक्ति संगीत की अगली पेशकश अनूप जलोटा की आवाज में। नवाब आरजू ने इस गीत को लिखा है, दुर्गा नटराज ने संगीत दिया है, एल्बम है बोलो जय श्री राम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब हम सुनते हैं सोनी चौधरी झा के आवाज में खूबसूरत सा भजन। सोनी चौधरी झा ने ही इसे लिखा है और किशोर वत्स ने संगीत दिया है। एल्बम है ओ सांवरे मनमोहना।

कार्यक्रम की आखिर में सुन लेते हैं साधो वंद की आवाज में खूबसूरत सा भजन। धनंजय शाही ने इसे लिखा है, चंद्र कमल ने संगीत दिया है और एल्बम है आए श्री राम।

साधो वंद के गए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं, सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी।

कार्यक्रम यूवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा यानी विनोद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम यूवाणी में ढेर सारी बात करते हैं सावधानियां। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय सेना के शौर्य की याद दिलाता कारगिल विजय दिवस, और कुछ बीच में गाने भी सुनेंगे। फिर समय रहते सुन पाएंगे विकसित भारत 2047 की योजना। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नदियों और तालाबों में तैरने से बरतें सावधानियां। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में नदियों और तालाबों के पास जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वहां हमेशा अत्यधिक सावधानी बरतनी खतरनाक हो सकता है इसलिए वहां हमेशा अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि नहाने से बचें, उफनते पानी या गहरे तालाबों में तैरने या नहाने बिल्कुल न जाएं, जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। पानी के पास की चट्टानों और घाट काई की वजह से बहुत फिसलन भरे होते हैं, जिससे पैर फिसलने का खतरा बना रहता है। तेज बहाव वाली नदियां या पुलियां को पार करने की कोशिश कतई न करें, और करें भी तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। बच्चों को तालाब और नदियों के किनारे पर अकेले कभी न जाने दें। और सबसे बड़ी चीज है कि मौसम विभाग या प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से जरूर लें। यदि आप चाहें तो बाढ़ के दौरान बचाव के उपाय या आप

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी मिल सकती है। बारिश के मौसम में सुरक्षित रहने के लिए बिजली के खंभे से दूर रहें, उबला हुआ पानी पिएं और वाहन एकदम धीरे चलाएं। मानसून में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। बिजली के खंभे और टूटे तारों से दूर रहें। गीले हाथों से किसी भी स्विच या बिजली के उपकरण को न छुएं। बारिश में गाड़ी की गति धीमे रखें और हेडलाइट जरूर चालू रखें। अगर किसी कारण से गहरे पानी में जाने से तो बचना ही चाहिए। बच्चों को हमेशा नजर रखें और तैरने से पहले सुरक्षा नियमों का जरूर पालन करें। इसमें सबसे बड़ी सावधानियां हैं, पानी बढ़ने पर तुरंत किसी सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। खाने पीने की सूखी चीजें, पीने का साफ पानी और पहली मदद का डब्बा जरूर रखें, यानी फर्स्ट एड के नाम से जिसे जाना जाता है। रेडियो, टीवी या फोन पर आ रही चेतावनी और घोषणाओं पर पूरा ध्यान दें। तेज बहते पानी में बिल्कुल न चलें, क्योंकि 6 इंच का पानी भी आपको गिरा सकता है। बाढ़ के पानी में गाड़ी न चलाएं, कारें 2 फीट पानी में भी बह सकती है। गीले उपकरणों को न छुएं और घर खाली करते समय मुख्य स्विच जरूर बंद कर दें। पानी में डूबे हुए खुले मैनहोल, सीवर और नालियों से सावधान रहें। हमेशा साफ या अच्छी तरह उबला हुआ पानी ही पिएं और इसे इस्तेमाल करें। बाढ़ के पानी में संपर्क में आए खुले भोजन को खाने से अवश्य बचें। रोजाना के छोटे छोटे बदलावों से हम हजारों लीटर पानी भी बचा सकते हैं। श्रोताओं, इसी बात पर अब हम सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, जिसे लिया है जोगन एल्बम से, रश्मि ने इसे गाया है। आइए सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, हमारी बातें हो रही थी नदियों और तालाबों में तैरने से सावधानी बरतने के बारे में। अब हम बातें करेंगे भारतीय सेना के शौर्य की याद दिलाता कारगिल विजय दिवस। श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2026 को भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान की 27वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक विजय की याद दिलाता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की ऊंची चोटियों से पाकिस्तानी गुटपैंथियों को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। शहीदों का बलिदान, इस युद्ध में देश की रक्षा के लिए 527 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर शौर्य संध्या और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है।

पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों पर भारतीय सेना के शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए 27वीं कारगिल विजय दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम शुक्रवार को लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर औपचारिक रूप से शुरू हुआ। जश्न से पहले कारगिल युद्ध स्मारक को खास तौर पर सजाया गया है, जो ऑपरेशन विजय के बहादुर सैनिकों के प्रति देश का आभार व्यक्त करता है। इस साल जश्न के हिस्से के तौर पर कारगिल युद्ध स्मारक पर होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह जश्न उन सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान दी थी। रविवार 26 जुलाई यानी कल होने वाले मुख्य राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह से पहले भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के व्यापक इंतजाम किए हैं। लुमोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध की यादों को ताजा करने के लिए युद्ध स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले जवानों और अधिकारियों ने भी भाग लिया और देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को याद किया गया। आज यानी 25 जुलाई में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में विश्वनाथन स्टेडियम में गौरवमय संस्कृति विजय भोज और कारगिल युद्ध स्मारक पर शौर संध्या शामिल थे। पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक, गणमान्य व्यक्ति और आमंत्रित अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह युद्ध के 26 साल बाद भी सेना और नागरिकों के बीच लगातार बने तालमेल को दर्शाता है, क्योंकि यह युद्ध दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा था। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

अतिथि के तौर पर कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राजनाथ सिंह वीर नारियों और वीर माताओं से बातचीत करेंगे। इसके अलावा वर्चुअल वॉकथ्रू पोर्टल पर उद्घाटन करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। इस जश्न से पहले जुलाई 2026 में सेना ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें 1999 के ऑपरेशन विजय के नायकों के सम्मान में 5140 गन हिल तक यादगार ट्रैक को टाइगर हिल का सार्वजनिक अभियान शामिल था। इस साल कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम सैंडो टॉप के मीडिया दौरे पर मटायन में भारतीय सेना के ऑपरेशन क्षमता प्रदर्शन के साथ खत्म होगा। इस प्रदर्शन में भारतीय सैन्य की सैन्य क्षमताओं में हुए नए बदलावों को दिखाया जाएगा, जिससे आधुनिक युद्ध के लिए तकनीकी प्रगति, ड्रोन तकनीकी और इनोवेशन पर खास जोर दिया गया है। यह सालाना आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान को श्रद्धांजलि देने पर का एक जरिया है और कारगिल युद्ध के नायकों का सम्मान करने के देश के संकल्प को फिर दोहराता है। अब यह सुनते हैं एक और गीत फिल्म मरिकंडिका से, द क्वीन ऑफ झांसी। शंकर महादेवन एवं प्रसून जोशी ने इसे गाया है। फिल्म है मरिकंडिका।

देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

0: अभी आपने मणिकर्णिका फिल्म से इस गीत को सुना, शंकर महादेवन एवं प्रसून जोशी ने इसे गाया था। श्रोताओं, अब हम बातें करेंगे योजना विकास भारत 2047 पर, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं कुछ संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब हम बातें करेंगे विकसित भारत 2047 की योजनाओं पर। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री के रोजगार एवं कौशल विकास पैकेज के अंतर्गत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। योजना के दो भाग हैं। यह कर्मचारियों को सहायता प्रदान करती है और प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग देती है। साथ ही अतिरिक्त रोजगार सृजन करने वाले प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा यह योजना नए उद्यमों के प्रवेश को बढ़ावा देने और मौजूदा उद्योगों, विशेष रूप से श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की पूरक होगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे IPFO के माध्यम से जाना जाता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का परिव्यय है। यह योजना का उद्देश्य 2 वर्ष की अवधि में देश में 3.5

करोड़ 5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर लागू होंगे। योजना के तहत नवनियुक्त युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन और नियुक्ताओं को नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रति नए कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना के भाग अंतर्गत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किए जाएंगे। भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन से जुड़े खातों में किए जाएंगे। IPFO के अंतर्गत आने वाले किसी प्रतिष्ठान में पहली बार शामिल होने वाले कर्मचारी जिनका सकल वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह तक है, 1 महीने के वेतन के बराबर लाभ अधिनियम 15,000 रुपये तक सीमित 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। सेवा के 6 महीने पूरे होने पर पहली किस्त सीधे कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। कर्मचारी को EPFO द्वारा निर्धारित वित्तीय दक्षता पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है। 12 महीने की सेवा के बाद दूसरी किस्त एक बचत योजना के स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसका भुगतान सदस्य को बाद में किया जाएगा। सरकारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के माध्यम से रोजगार का औपचारिकरण किया जाएगा। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहली बार नौकरी करने वाले रोजगार योग्य बनाया जाएगा। सतत रोजगार के माध्यम से रोजगार क्षमता को सुधार किया जाएगा और वित्तीय साक्षरता कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। अतिरिक्त रोजगार सृजन की लागत की भरपाई करना, कार्यबल की स्थिति और उत्पादकता बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को प्रोत्साहित करना इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जाएगा, जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत वैधानिक निकाय है। श्रोताओं, अब इसी कड़ी में सुनते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है गंगा जमुना फिल्म से।

श्रोताओं, फिल्म गंगा जमुना के इसी गीत के साथ ही युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: श्रोताओं, शाम के 6 बज चुके हैं। अब हम सुनते हैं एक भोजपुरी लोकगीत बालेश्वर प्रसाद और साथियों के आवाज में।
1: मैंने सुना।

अभी हमारे श्रोता आप सुन रहे थे बालेश्वर प्रसाद और साथियों की आवाज़ में एक खूबसूरत सा भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन थोड़ी देर में।

प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अपना पद से इस्तीफा दे देले बाड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भेजल अपन त्यागपत्र में श्री प्रधान कहले कि पिछला 10 दिन से उनकर मन बहुत व्यथित रहे। ये उनकर कोनो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बात नहीं है। वो आगे कहले कि भारत के युवा शक्ति देश के सबसे बड़ ताकत है आ युवा सबके भ्रम के चक्रव्यूह में ना फंसे दिहल जाए। श्री प्रधान कहले कि त्यागपत्र यही से देनिया ताकि जंतर मंतर आदेश में जे वर्तमान स्थिति बनल बा ओकर राष्ट्र विरोधी ताकत फायदा ना उठावे। त्यागपत्र में श्री प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन विश्वास आ सहयोग खातिर आभार जतवले। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद कहले कि उनकर 10 साल के सफर सार्वजनिक जीवन आ विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण के प्रमाण बा। श्री धर्मेंद्र प्रधान के उनकर अथक सेवा सुधार के प्रति प्रतिबद्धता आ मजबूत भारत के निर्माण में योगदान खातिर धन्यवाद दहले। कांग्रेस जनता पार्टी CJP आंदोलन वापस लेवे के घोषणा कर दिले बिया। नई दिल्ली के केंद्र सरकार के ओर से केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के मौजूदगी में CJP आंदोलन खत्म करे के घोषणा कैलस। ये घोषणा सरकार और CJP के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैल गई, जेमें केंद्र सरकार की ओर से बतावल गई कि आंदोलनकारियन के उचित मांग मान लेहल गई बा। वहां में CJP सब छात्रन से अपील कैलस कि सब छात्र शांतिपूर्वक अपना अपना घरे लौट जाए। एकरा पहले केंद्र सरकार और CJP के बीच आज नई दिल्ली में तीसरा दौर के बातचीत भइल। बैठक में CJP के 3 गो मांग समेत परीक्षा प्रणाली में सुधार करे और पेपर लीक के घटना के रोके के उपाय पर चर्चा भइल। नेट पेपर लीक मामला के लेके वामपंथी छात्र संगठन समेत अलग अलग छात्र संगठन आज बिहार बंद के आह्वान पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कैले। राजद समेत कई गो विपक्षी दल भी बंद के अपन समर्थन दहले और विरोध में शामिल भेले। राजधानी पटना में कोनो स्थिति से निपटे खातिर अर्धसैनिक बल के कई गो कंपनी के तैनाती कैल गेल रहे। बंद के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल सब जिलन के रेलवे स्टेशन सरकारी प्रतिष्ठान आ संवेदनशील स्थान पर पुलिस के कुछ टुकड़ी और क्विक रिस्पांस टीम तैनात कैल गेल रहे। एने हमारे संवाददाता बतौलें कि विभिन्न जिला मुख्यालय में छात्र अपना मांग के लेके विरोध प्रदर्शन कैले, जेमें कुछ जगह पर पुलिस आ छात्र के बीच झड़प भइल। ए दौरान प्रदर्शनकारी के साथे साथे पुलिसकर्मी सब के भी घायल होके के सूचना बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन से अपन विचार साझा करी हैं। यह हर महीना आवे वाला रेडियो कार्यक्रम के 136वां कड़ी हुई। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शन के सारा चैनल, AIR न्यूज के वेबसाइट आ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कैल जाय। एकरा तुरंत बाद मैथिली भाषा में एकर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से कैल जाय। यह प्रसारण के बाद दोबारा रात के 8 बजे

एकरा के सुनल जा सकेला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहले कि संसद में बितावल हर दिन हर घंटा हर मिनट आ हर सेकंड लोकतंत्र के मजबूत बनावे खातिर समर्पित होके के चाही। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नवनिर्वाचित आ मनोनीत सदस्यन खातिर आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन आ प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के संबोधित करे के बेरा उ ई बात कहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार के 100 दिन पूरा हो गई बा। इस अवसर पर पटना के बीआईटी मेसरा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री

0: में विकास के नया गति मिली। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी या विजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्रिपरिषद के कई गो सदस्य, विधायक, विधान पार्षद आ अलग अलग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहलन। वही जाए एगो और दूसरा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आज पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपया के लागत से बनल अत्याधुनिक भवन के उद्घाटन कैलें। मानसून के सक्रियता से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में बरखा बरसे के सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ आ औरंगाबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्व आ दक्षिण पश्चिम हिस्सा में कई जगह तेज हवा के साथ बरखा बरसे के अलर्ट जारी कैले बा। ए दौरान कुछ जगह पर वज्रपात भी हो सकता। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:10 हुए हैं, सुनते हैं किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान बानी सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार बा। पंचू भाई रवो के नमस्कार।
1: नमस्कार ए जगत भाई या सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के दंडवत। जगत भाई
0: जी भैया,
1: देखी बरसात के जौन दिन है उ हरियाली तो लेके अबे करेला, लेकिन अपना संगे बहुत सारा परेशानी भी लेके आवेला।
0: जी
1: जैसे आजकल बड़ी हमनी के सुनत हैं जा कि भाई सांप बिछी कुल निकलत हन, घरन में चल जाता हन, आ रोज कहीं ना कहीं से ऐसा समाचार आवता कि कोई घर में झाड़ू लगावत खूनी या और कोनो काम करत खूनी, छत पर सुतल खूनी, सांप काट देवे से उनकर मौत हो जाता है। तो उकरा में हमने के थोड़ा सा सावधानी बरते के चाहिए। आ सबसे बड़हन सावधानी ई बात कि सुतत खूनी मच्छरदानी जरूर लगावे के चाहिए।
0: भैया बात तरवा सही कहला ही। बर बरसात में देखिए कीड़ा मकोड़ा के ज्यादा प्रकोप बढ़ जाला। दूसरा चीज की जौन वहनी के घर रहे वाला बा सुखलक में तो अपन जेने मन तेने रह गिल
1: सन,
0: आ जब पानी भर जाला तो ऊपर ऊंचासे पर न जई हसन, ऊंचास पे तो घरे दुआर मिली आ चाहे खड़हर मिली जहाँ ऊंच जमीन बा। अब वहनियों के डर रहला सांप गुजर के कि भाई चलो एकांत जगह रही कोई से भेंट मत हो, लेकिन मजबूरी बा कि वहनियों से भेंट हमनियों से भेंट दोनों में हुई जाला
1: हो जाता, तो वही ले बचा
0: वही में कहीं डबल तक काट देलस।
1: रात में अगर मान ली कि बाथरूम वगैरह जाए बेड पर से उतरत खूनी जरूर कुछ जला के देख ली भाई नीचे कुछ बा ना।
0: अच्छा दूसरा चीज हम यही देखी ना कि जितना बरसात में जैसन कल कि सांप गुजर निकले लसन उतना कोनो समय में ना मिल भेटा सन। ये भी बा काले हम जात रहनी और खेत में अपन पानी करत रहे देखनी कि बड़का चुपके सांप रहे, देख के तो भभर गिनी हम, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा खराब के देखनी करे ये धमिनी आई बड़ा लंबा रहे हम जब तक एक लाठी से बड़ा रहे पोषण करके रहे। तो देखिए सावधानी अपना से करके चले के बाद
1: एक अलावा जिसे
0: बधार तरफ जाते नहीं खेत बधार में तो प्लास्टिक के जूता जरूर लगा के जाए कि सांप गुजर पड़ी तो कम से कम हाँ इससे बचाव हुई। तो सुरक्षा देखिए अपने आप के जरूरी बढ़ुए। और रह गई बात कि हमने की देखी बरसात में भी जैसन चाहिए बरसात अभी भइल ना, पानी बिना बहुत सा खेत के अभी रोपनी जौन बा भइल नहीं, और बहुत से खेत में तो अभी देखी धूरे उड़ रहल बा।
1: लेकिन जहाँ भी

0: भइल बा ओहिजा के स्थिति बा कि मान ली कुल पोखर तालाब भर गइल बा कई लोग देखत नहीं कि भाई बिया कबारत रहन तो तालाब या पोखर हेर के ऊपर जाए के बाद खेत में छींटे खातिर तो वो संबंध में भी हमने के थोड़ा सा आ चुकी आज डूबे विश्व डूबे से बचाव जरूरी दिवस है आज है 25 जुलाई के
1: अच्छा
0: तो हर साल हमने के मनाई जा विश्व डूबे से बचाव दिवस तो भाई नहर पार करे के बा कभी कभी रोड के पार से पानी ऊपर बहेला बहुत तेज धारा में ओकरा के पार करे के बा तो ये सब में हमने के बहुत सावधानी चाहिए आ कार्यक्रम में और हमने के सब बतियावत रही लेकिन आगे का जानकारी मिले वाला बा इहो सब बता दी
1: देखिए भैया आज जौन हमने के अपन किसान बाड़ी में जानकारी करे के बा पूरी तरह से बा सबसे पहले आज के खर खबरात के बारे में जानकारी कल जाई और आज के बात में गृह वाटिका कितना लाभप्रद बा एकरे बारे में जानकारी कल जाई डॉक्टर रीता सिंह से फिर नया उम्र के नया फसल में मिर्चाई की खेती के जानकारी कल जाई और शीघ्र रोपनी करी समाप्त ये आज के नसीहत रही एकरे बाद मौसम के जानकारी कैला के बाद कार्यक्रम के समापन कर तो देखी कार्यक्रम के अनुसार अब हमनी के कुछ खर खबरात जान लिहल जाओ
0: देखी श्रोता सभे आज के जवन प्रमुख कृषि से संबंधित खबर बा ओकर जैसे कि जगत भाई बतौली हाँ कि कमजोर मानसून के असर से खरीफ फसलन के बुआई पर असर पड़ल बा विशेषकर धान आ दलहन के बुआई के रकबा पिछला वर्ष के तुलना में कम दर्ज कल गई बा हालांकि देश के कई गो राज्य में भारी बारिश के संभावना भी जतावल गई बा भारत मौसम विज्ञान विभाग जना के IMD भी कहल जाला कई राज्य में भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा के पूर्वानुमान जारी कैले बा अब जमुना क्षेत्र में अच्छा बारिश होई उजा धान के रोपाई आ खरीफ फसल के लाभ मिले के उम्मीद बा एगो खबर ई भी बा कि केंद्र सरकार खाद के उपलब्धता पर भरोसा देले बा सरकार कहले बिया कि खरीफ मौसम खातिर उर्वरक सब्सिडी आ खाद के पर्याप्त व्यवस्था कैल गेल बा ताकि किसान भाई लोग के समय पर खाद मिल सके एगो खबर ई बा कि ड्रैगन फ्रूट के खेती के बढ़ावा दिहल जा रहल बा उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट जैसन उच्च मूल्य वाला फसल के खेती के प्रोत्साहित कैल जा रहल बा एकरा से किसान भाई लोग के आय बढ़ावे के प्रयास हो रहल बा तो ई सब रहल हमने के आज के कृषि आ कृषि से संबंधित खबर अब अगला हमने के का जानकारी मिले वाला बा जगत भाई
1: खबर रवा बहुत निमन देहनी लेकिन गृह वाटिका के बात हमने के कैल ही जा तो गृह वाटिका में बहुत से चीज बढ़ुए हमने के जोन जानकारी कम बा और एकरा के हमने के जोन लाभ वाला चीज बा जैसे गृह वाटिका कितना हमने खातिर लाभप्रद बा एकरे बारे में हमने के जानकारी डॉक्टर रीता सिंह से लेवे के बा ताई जाओ
0: सुन लिया
1: जाओ
2: रोहतास जिले के सभी किसान और किसान भाइयों और बहनों को हमारा प्रणाम जैसा कि किसान भाइयों और बहनों आप जानते हैं कि गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य परिवार के प्रत्येक सदस्य को ताजे फल एवं सब्जी प्रतिदिन उपलब्ध कराना है जिससे शरीर को प्रतिदिन पौष्टिक तत्व विटामिन और खनिज लवण मिल सके साथ ही साथ यह प्रतिदिन घर के बजट के लिए भी लाभकारी है यह एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करता है गृह वाटिका में व्यक्ति अपने अल्पकालीन समय का उपयोग मनोरंजन के रूप में भी करता है यह वाटिका आजकल समृद्ध परिवार की पहचान बन चुकी है बाजार के बदलते परिवेश में सब्जी मंडी में सब्जी ताजे दिखने वाले सब्जियों में रंग का व्यवहार किया जाता है जिससे कि बासी सब्जियां भी ताजी प्रतीत होती हैं और तो और उनमें कीटनाशक दवाओं का अवशेष भी मौजूद रहता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य आय नहीं बल्कि पारिवारिक लाभ अभिरुचियों का सदुपयोग तथा स्वस्थ मनोरंजन है किसान भाइयों और बहनों

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब्जी वाटिका में जो उत्पाद प्राप्त होता है वह स्वच्छ और ताज़ा होता है और उससे पोषक तत्वों की हानि न के बराबर होती है। गृह वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियां में पोषक तत्व विशेष रूप से विटामिन और भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ले जाने ले आने तथा भंडारण के दौरान पोषक तत्वों की हानि न के बराबर होती है। साथ ही साथ अगेती और पिछेती सब्जियां की प्राप्ति भी की जा सकती है जो कि बाजार में काफ़ी महंगी मिलती है। इसलिए गृह वाटिका उत्पादों का मूल्यांकन बाजार भाव पर किया जा सकता है किंतु उनके पोषक तत्वों के महत्व के आधार पर नहीं। यह नहीं कि जब हम बाजार में से सब्जियां खरीदने जाते हैं तो आने जाने में लगने वाले समय के साथ साथ परिवहन में भी व्यय होता है। यदि आने जाने में लगे खर्च समय के व्यय की तथा पोषक तत्वों की हानि को भी ध्यान में रखकर आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाए तो गृह वाटिका निश्चित रूप से आमदनी का स्रोत बन सकता है। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों जानते हैं कि सब्जी वाटिका मकान के पिछवाड़े में बनाया जाता है, इसमें हर तरह की सब्जियां लगानी चाहिए। वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर कुकुरबिटेसी कुल की फैमिलियां जैसे कि कद्दू, लौकी, करेला, परवल, खीरा, खरबूजा ये सब ले सकते हैं। लिगुमिनस फैमिली की सब्जियां टमाटर, सेम, लोबिया, क्रूसीफेरी फैमिली की सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी ले सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले भाग के आधार पर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं जैसे जड़ वाली सब्जियां मूली, गाजर, शलगम, कंद वाली आलू, शकरकंद, शलकंद जैसे प्याज, लहसुन, पत्तियों वाली सब्जियां पालक, मेथी, चौलाई, धनिया, फूल वाली सेम, लोबिया, मटर। कोशिश करनी चाहिए कि जड़ वाली सब्जियां मेड़ पर लगानी चाहिए। गहरी जड़ वाली सब्जियों के साथ उतली जड़ वाली सब्जियां की कतार लगाकर मिश्रित खेती कर सकते हैं। और तो और मौसम के आधार पर भी सब्जियां लगानी चाहिए जैसे कि जायद की सब्जियां लौकी, करेला, भिंडी, लोबिया। वर्षा ऋतु में भी सब्जियां जैसे कि आप लेते ही हैं लौकी, परवल, तोरई, करेला, चौलाई, जाड़े की सब्जियां मूली, शलगम, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मेथी, मटर, सेम, आलू, प्याज। ये तो बात हुई सब्जी वाटिका के साथ साथ फल वाटिका मकान के पिछवाड़े या दोनों किनारे में बनाया जाता है। इसमें मध्यम ऊंचाई वाले वृक्ष जैसे अमरूद हुआ, अनार, केला आदि लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका के बाहरी मेड़ पर पपीता या आंगन में अंगूर की बेल फैलाई जा सकती है। फूल वाटिका घर के किसी भी कोने में बनाई जा सकती है जिसमें कि आप बेला, चमेली, गुलदावदी, गेंदा लगा सकते हैं। गृह वाटिका में सब्जियों के बीज लगाने के लिए एक पौधशाला होना बहुत आवश्यक है। आप सबों से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ घर के कूड़े कचड़े तथा घर की रसोई घर के अवशेष तथा फसल अवशेष के सदुपयोग के लिए एक खाद का गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे के ऊपर कोशिश करना चाहिए कि पंडाल बनाकर लतर वाली सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं। सभी जगह का सदुपयोग करना चाहिए। गृह वाटिका का आकार अपने घर के पास जमीन की उपलब्धता या परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी निर्भर करता है जो वाटिका की सही देखरेख कर सकते हैं। उस हिसाब से आप गृह वाटिका का आकार बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या 5 हो तो 250 वर्ग मीटर की गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल एवं सब्जी लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी सही देखभाल कर सकते हैं। आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर गृह वाटिका सब्जी, फल, फूल तथा फसल प्रदान हो सकती है। जहां तक संभव हो गृह वाटिका रसोई के स्थित हो ताकि रसोई का पानी आसानी से गृह वाटिका तक पहुँच जाए और सब्जी वाटिका का उत्पाद भी आसानी से रसोई तक पहुंच जाए। गृह वाटिका को अधिक से अधिक फायदेमंद बनाने के लिए पहली बात कि सब्जी वाटिका के लिए खुली जगह होनी चाहिए जिसमें कि अच्छी तरह से सूर्य की रोशनी मिल सके क्योंकि छायादार जगह पर फल और सब्जियों के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ सिंचाई जल का निकासी भी अच्छी सिंचाई और जल की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हमारे किसान भाई कम ध्यान देते हैं इस पर। और तो और कोशिश करनी चाहिए कि सब्जी वाटिका को मुख्य दो भागों में बांट दे। एक होता है मेरा स्थायी क्षेत्र जिसमें कि फसल के लिए यानी अस्थायी फसल चाहे बहुवर्षीय फसलों के लिए होता है जिसमें मुख्य आप फलदार पौधे लगा सकते हैं जैसे केला, नींबू, अमरूद, पपीता। कुछ बहुवर्षीय सब्जी भी लगा सकते हैं जैसे कि सहजन, कुंदरी, खेक्सा। दूसरा है मेरा अस्थायी क्षेत्र, इसमें प्राय एक वर्षीय वाली सब्जी लगा सकते हैं जिसमें कि हम आवश्यकता अनुसार अनेक भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सब्जी वाटिका की

0: घेराबंदी पर लत्तर वाली सब्जियां लगानी चाहिए। इस फसल से सब्जी के साथ कुछ हद तक सब्जी वाटिका की सुरक्षा भी होती है, जैसे सेम वर्गीय, खीरा वर्गीय, बरसात और जाड़े में। बरसात में जाड़े में आप मटर लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका में दो प्लॉटों के बीच वाली जगह का उपयोग जड़ वाली सब्जियों के लिए करना चाहिए, जैसे मूली, गाजर, बीट लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका में के अस्थाई क्षेत्र में दोनों किनारे पर गड्ढा खोदकर वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद भी कहते हैं, या सिंपल खाद जो बनाते हैं आप लोग, उसको कोशिश करें कि बना लें। सब्जी वाटिका के स्थायी क्षेत्र को अपने संतुलित पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर अलग अलग सब्जियों को अलग अलग प्लॉटों में लगाने चाहिए, ताकि सालों भर आपको सब्जी उपलब्ध हो। विभिन्न तरह की सब्जियां, जैसे कि पत्ती वाली सब्जियां, पालक, बंधा गोभी, मेथी, बथुआ, लाल साग लगा सकते हैं। दलहनी सब्जियों में मटर, बोड़ो, सेम वाली सब्जियां ले सकते हैं। सलाद वाली सब्जियां मूली, गाजर, चुकंदर ले सकते हैं। मसाले वाली सब्जियों में आप प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया। फल वाली सब्जियां तरबूज, खीरा, खरबूजा ले सकते हैं आप। और जो विभिन्न तरह की सब्जियां हैं, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी वर्गीय, गाजर, मूली, सलगम, लत्तर वाली सब्जियां ले सकते हैं। और साथ ही साथ फल के लिए केला, पपीता, अमरूद, नींबू, ये सब आप अपने आंगनबाड़ी में लगा सकते हैं। ये जितनी भी चीज बताई गई है, उसको अगर ध्यान में रख के अगर गृह वाटिका का निर्माण किया जाए और उचित फल और सब्जियों का चुनाव किया जाए, तो हम सभी को प्रतिदिन ताजे फल और सब्जियां मिल सकती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और अपने घर के बजट को कम करने में सहायक होगा। यदि सब्जी वाटिका को सुनिश्चित ढंग से बनाया जाए, सघन फसल चक्र उपयोग किया जाए और बाड़ पर लत्तर वाली सब्जियां लगाई जाएं, तो अधिकतम उपज प्राप्त करके 250 से 300 वर्ग मीटर सब्जियों के लिए प्रतिदिन कम से कम ₹1 का शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, टिकाऊ जगत के भाई, लिए कई विकल्पों में से एक अति
2: महत्वपूर्ण जैविक कृषि कितना लाभप्रद
1: है। कृषि के सिद्धांत में फसल का उत्पादन ऐसी विधियों द्वारा किया जाता है,
2: बड़ा बढ़िया से
1: संसाधनों का उपयोग
2: उपयोगी जानकारी खातिर पहुँचाए
1: साथ मिलकर
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ल गयी। कृषि में किसी, लेकिन पहले सुलझाया कुछ संदेश।
1: सिंथेटिक कारकों का उपयोग वर्जित है। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूदनाशकों, खरपतवार

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता

0: मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी पचू भाई, अब तनी हमनी के अपना खेती बारी में जुटल जाओ, क्योंकि मिर्चाई के बिया डाले से कुछ लोग तैयार कर ले बा, कुछ तैयारी के जो कर रहल बा।
1: देखी मिर्चाई एगो ऐसा नगदी फसल है जवना में कम लागत में बढ़िया आमदनी होला।
0: देखी मिर्चाई जवन बा एकर खेती हल्का से भारी माटी में होला, लेकिन दोमट माटी एकरा खातिर बहुत बढ़िया बा, और बरसात खातिर जहाँ पानी के निकास होके ओह पर तो समझ लें कि बड़ा नीमर होला, जेकर पीएच मान 6 से 7 रहे के चाहिए।
1: अब बिया भी हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त खरीदल ठीक रहेगा।
0: जी जी जी। तो देखी बहुत से प्रभेद भी बैकर, जैसे मानी हाइब्रिड में गद्दर, ब्यादगी, मझलिया, पूसा वाला बा, एकर प्रभेद की खेती हमनी के कर सकते नहीं जा। लेकिन बहुत से ऐसा भी प्रभेद बा हमनी के लोकल भी जैसन की बा नज़दीक वाला, तो ओकर खेती करे से बहुत से गुच्छा गुच्छा होला।
1: देखी ये सब तो बढ़ ले बा, अगर प्रभेद के चयन कर लेनी तो पौधा रोपे से पहले
0: जी
1: खेत में सड़ल गोबर के खाद मिला दही, रोपाई के समय पौधा से पौधा के दूरी करीब 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार के दूरी 60 सेंटीमीटर रखे के चाहिए। सिंचाई एकर कैसे होके के चाहिए?
0: सिंचाई देखी सिंचाई के मामला में अगर देखल जाओ तो बारिश के तभी समय बा,
1: मतलब जरूरत के अनुसार,
0: जरूरत के अनुसार पटवन ओकर जरूरी बा, और खास कर बरसात में हमनी के मेड़ बना के अगर रोपल जाये तो ज्यादा बढ़िया रही मिर्चाई।
1: जगत भाई एक बात और बाकी, बरसात में खेत में पानी ना जमा होके के चाहिए।
0: जी
1: कहे की
0: यही से कल कि मेड़ बना के अगर रोपल जाये तो पौधा में जितना पानी के जरूरत बा खींच ली, बाकी सब धीरे से निगार होकर कराई सब
1: निकल जाये,
0: बाहरी निकल जाये,
1: और ना तो फिर एकरा से पौधा के जड़ सड़ेला। आ समय समय पर निराई गुड़ाई भी करत रहे के चाहिए, ऐसे खर पतवार कम हुई आ पौधा भी मजबूत होखेला।
0: जब पच्चू भाई बात कैल है जड़ सड़न के, तो ओकरा खातिर भी हमने के दर दवाई बढ़ुए, जैसे बारिश ज्यादा होखे लगल तो विभीषण भइल या कोनो फफूंदनाशी।

0: दबावल।
1: हाँ, ओकरा के छिड़काव करे से कि जड़ में मजबूती आ जाला और पौधा के जड़ गलन ना हो पाए।
0: तो मिर्च में एगो रोग भी होला जैसे पत्ती मुड़न, एकदम पत्ती लाला की लाठी आ गई
1: बन लिया जाए, पत्ती सिकुड़न रोग कहा।
0: हाँ, तो एकरा अलावा में कुछ कीड़ा भी लागे लसन, जना में थ्रिप्स बा, माहू बा, फल छेदक कीड़ा बा, फल में के छेद दिए सन, खा दिए सन। तो ऐसे नियमित रूप से हमने के मिर्च के खेत के निगरानी करत रहे के चाहिए।
1: बनरी जवन रवा बात कर रहे हैं घुर्ची आ जाए, तो बनरी रोग जो बा पौधा में मिर्च के ज्यादा लगेला, कभी छोटे में लागी तो कभी बड़ लागी। ऐसे हमेशा जैसा निगरानी ओकर करत रह जी, जैसे एगो ऊपर के पत्ती एक पौधा में भई आ तुरंत ओकर दवा के प्रयोग करी
0: आ प्रभावित जो पत्ता बता उन्हें हटा भी देवे के चाहिए। आ मिर्च के जब फल पूरा विकसित हो जाए बढ़ जाए तो ओकर समय समय पर तुलाई करत रहे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, काहे कि तब फिर पक जाए।
0: हाँ, नियमित तुलाई से नया फल ज्यादा लागेला
1: जी,
0: उत्पादन बढ़ेला। तो कुल मिला के जगत भाई, सही किस्म, संतुलित खाद, समय पर सिंचाई आ रोग कीट से बचाव अपना के मिर्चा के खेती के बढ़िया उपज कर जा सके।
1: जी जी जी।
0: आ अब देखी कुछ हमने के नसीहत भी बा।
1: नसीहत देखी भैया, ये बोलवे रोपनी के समय हमने के चल, और रोपनी की बात कही में हमने के पहले भी कल ही जा कि जहाँ पानी के व्यवस्था बा ओहिजा खेती लगभग पूरा हो गया रोपनी के। जहाँ मानसून पर निर्भर बा ओहिजा तनका मनका बाकी बढ़ुए, तो उन लोग से भी निवेदन बा कि जितना जल्दी हो सके,
0: मतलब जमुना खेत में अबले धान के रोपनी बाकी बा,
1: हाँ
0: ओहिजा बिना देर कैले रोपनी पूरा कर ली।
1: जी जी जी,
0: कहे कि समय पर रोपनी करे से पौधा के बढ़वार अच्छा होला, कल्ला अधिक निकलेला आ उपज बढ़े के संभावना रहेला। रोपनी के समय 2 से 3 गो स्वस्थ पौधा एके जगह लगावे के चाहिए, कतार से कतार लगभग 20 सेंटीमीटर आ पौधा से पौधा 15 सेंटीमीटर के दूरी राखी। खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बनल रहे के चाहिए, बाकी जरूरत से ज़्यादा पानी जमा मत होके दी। आ जहाँ रोपनी हो गई बा जगत भाई, ओहिजा खर पतवार नियंत्रण, संतुलित खाद के प्रयोग आ समय समय पर खेत की निगरानी जरूर करे के चाहिए।
1: हाँ, चूंकि 3 से 4 इंची पानी हमें जरूर रहे के चाहिए जौन धान के रोपनी हो गई, ताकि खर पतवारों में न निकल।
0: आ समय पर कोई देखभाल से धान के फसल मजबूत होला आ बढ़िया उत्पादन।
1: देखिए खेती तो निश्चित बभिया कि खेत कहला कि हमरा के देख तब तोरा के देख, तो खेत के आर पगार हमेशा जात रहल जी, तो खेती में कोनो परेशानी हमनी के ना हुई।
0: आ कुछ कृषि सलाह भी बात बता
1: दी। कृषि सलाह देखी बोलुवे कि भारी वर्षा, अधिक बिजली, तेज हवा, फसल के नुकसान, फल फूल झड़ल, कीट रोग प्रकोप और सब्जी और बागवानी के फसल के क्षति पहुंचा सकता, इसे एकरा के हमने के हमेशा देख रेख करत रहे के।
0: और का बा
1: एकरा अलावे देखल जाओ कि लघु संदेश सलाह बा कि भारी वर्षा के संभावना के देखत हुए नर्सरी में जल निकासी, जैसे बिया हुआ हमनी के तीन तरकारी साग सब्जी डलबे जाए, ओकर व्यवस्था करे जल जमाव से हमनी के बचा सके और बिचड़ा के जो नुकसान जौन बा वो भरपूर हमनी के बच जाए। एकरा अलावे जौन बा हमनी के खरीफ में बुआई जौन बा 15 से 20 दिन के बाद निकौनी कौड़ी करी, और इस तरह से हमनी के सलाह बढ़ुए।
0: देखी जे भी मक्का के खेती के लेबा, तो खरीफ मक्का के बुआई के 15 से 20 दिन के बाद निकौनी जरूर करे के चाही। मक्का में धनबाद धन बाल जो निकलेला वो समय नत्रजन के उपरिवेशन करे के चाही। धान के खेती करे वाला किसान भाई लोग वर्षा जल के लाभ उठाते हुए धान के रोपाई के व्यवस्था सुनिश्चित करत, और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 25 ग्राम किलोग्राम जिंक सल्फेट के।
1: देखिए भैया, अब लगले हमने के मौसम के भी जान लिया जाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान से

0: ए अवधि में 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घना बदली रही। एक दो स्थान पर गरज चमक और आंधी चले के संभावना, भारी वर्षा भी होके के अनुमान बा। इमें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 25 डिग्री रहे के संभावना बढ़ गई। एक के साथे साथे हमने के समय जोन बा
1: उरागल बेरा हो गेल। श्रोता भाई बहन लोग से विदा लेवे के एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहन लोग के आ जगत भाई रहुओ के पंचू भाई के राम राम
0: राम राम। सब श्रोता भाई लोगन के भी

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:40 हुए हैं। सुनते हैं भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत। कार्यक्रम सांझ गीत का पहला गीत दामाद जी फिल्म से मनोज तिवारी और श्रेया घोषाल ने इसे गाया है। विनय तिवारी के बोल हैं, लाल सिन्हा का संगीत है। फिल्म है दामाद जी।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म विदाई से उदित नारायण की आवाज में। विनय बिहारी के बोल हैं, धनंजय मिश्रा का संगीत है, फिल्म है विदाई।

अब हम सुनते हैं एक और गीत मोहन राठौर की आवाज़ में। प्यारे लाल यादव ने इसे लिखा है, राजेश रजनीश का संगीत है, फिल्म है निरहुआ मेल।

0: सुन सोचतानी की काहे न आपन बिजनेस बढ़ाई
1: तो रोकले के बा
0: रोकले तो कोई नहीं खे बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी
1: हमरा से
0: तुहरा से तो बताओ
1: आकाशवाणी बाना हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा
1: फायदा बा जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई
1: बहुत आसान बा हम बतावत बानी नंबर लिखी 8700014242
0: ओ 8700014242
1: हाँ
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: स्वागत है भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझगीत में। आप इस समय सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गाना। अब हम सुनते हैं दरोगा बाबू आई लव यू फिल्म का एक गाना, श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में। विनय बिहारी के बोल हैं, लाल सिन्हा का संगीत है। फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू।

अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और नीलिमा निलय की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना। भाई जी भोजपुरिया के लिखे इस गीत को दिलीप दत्ता ने संगीत दिया था और फिल्म था आवत हुई हैं संवरिया। कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश उदित नारायण और खुशबू जैन की आवाज़ में। एसके चौहान के लिखे गीत को आरपी ठाकुर ने संगीत दिया है और एल्बम है यानी फिल्म है आपन माटी आपन देश।

उदित नारायण और खुशबू जैन के गाए इसी गाना के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हुए हैं। सुनते हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास में आप सभी श्रोताओं का। आज आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त विनोद। सबसे पहले नजर डालते हैं स्थानीय गतिविधियों पर। बिहार बंद के बीच सासाराम रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, कड़ी सुरक्षा के बीच सामान्य रहा रेल परिचालन। बिहार बंद के मद्देनजर सासाराम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त निगरानी में स्टेशन परिसर में शांति बनी रही, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बिहार बंद के मद्देनजर शनिवार को सासाराम यानी आज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में स्टेशन परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा कर्मियों ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगातार निगरानी रखी। यात्रियों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई और सुरक्षा व्यवस्था का लगातार मॉनिटरिंग की गई। बिहार बंद के दौरान अधिकारियों ने समय समय पर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं सुरक्षा बल के जवानों को आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी थी। प्रशासन ने आम लोगों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की तथा कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। श्रोताओं, इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक गीत, मुन्ना अजीज और इस जानकी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है आखिरी रास्ता।

0: कब करेंगे।
1: अभी आपने सुना आखिरी रास्ता फिल्म का ये गाना मुन्ना अजीज और एस जानकी की आवाज में। श्रोताओं, कार्यक्रम को आखिरी पड़ाव में पहुंचाते हुए स्थानीय गतिविधि की थोड़ी जानकारी लेते हैं। सासाराम में हालिया खबरों के अनुसार रोहतास पुलिस ने शिवसागर थाना क्षेत्र में हुई हाईवे लूटकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है और लूट के इस्तेमाल वैगनार कार भी बरामद की है। प्रशासन ने मिशन मोड में पात्र परिवारों के लिए 2300 नए राशन कार्ड बनाने की अभियान शुरू किया है। जीआरपी ने सासाराम स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन से 3 तस्करों को पकड़कर 22 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पाइपलाइन निर्माण कार्य के चलते सासाराम और विक्रमगंज के कई हिस्सों में बिजली

बाधित रहेगी। अब इसी के साथ दीजिए इजाजत कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: श्रोता सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहता सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:25 हो चुके हैं। सुनते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल थोड़ी देर में। शाम 7:50 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से ही सुनेंगे साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा और इस सप्ताह संसद में सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 8:00। शाम 8:15 पर पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में फोन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद के साथ।
1: दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
2: कोई मतदाता ना छूटे।
3: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
9: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
11: सुनिए, आपके पास कोई शानदार रेडियो आइडिया है क्या?
12: आइडिया है, कहानी है, ऑडियो कंटेंट है, लेकिन उसे सुनाएगा कौन?
11: आकाशवाणी।
12: जी हाँ, प्रसार भारती के आकाशवाणी नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित हैं।
11: क्या आप प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, कंटेंट क्रिएटर, राइट्स ऑनर या एग्रीगेटर हैं?
12: तो अपने मौलिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजिए और अपने कंटेंट को दीजिए आकाशवाणी का विशाल मंच।
11: रेडियो ड्रामा, फीचर, डॉक्यूमेंट्री, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो सीरीज, पॉडकास्ट, क्विज
12: और शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम तथा लोक संगीत आधारित कार्यक्रम भी।
11: हिंदी, अंग्रेजी और निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं में नेशनल, रीजनल और लोकल आकाशवाणी स्टेशनों के लिए।
12: आपके कार्यक्रम में हो सकता है विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से जुड़ने का अवसर।
11: चुनिए अपनी भागीदारी का तरीका, रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड या ग्रेटिस मोड।
12: रेवेन्यू शेयरिंग मोड में विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से आय का साझा अवसर, और स्पॉन्सर्ड मोड में अपने ब्रांड, उत्पाद या सेवा के प्रचार के लिए फ्री कमर्शियल टाइम का अवसर।
11: बस ध्यान रहे, कंटेंट मौलिक हो, अधिकार आपके पास हो और आकाशवाणी के कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का पालन हो।
12: आपके कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव ट्रीटमेंट, टीम, ऑडियो क्वालिटी और व्यावसायिक संभावनाओं का होगा मूल्यांकन।
11: तो फिर इंतजार किस बात का?
12: अपना कार्यक्रम प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में

0: आकाशवाणी पटना के क्लस्टर या नोडल कार्यालय को ईमेल करें।
1: हमारा ईमेल पता है
0: ddgeairpatna@redifmail.com या pecairpatna@gmail.com या
1: hoopatna@prasarbharati.gov.in।
0: अधिक जानकारी के लिए सीधे आ जाइए आकाशवाणी पटना।
2: आपका आइडिया, आपकी आवाज, आकाशवाणी का मंच।
0: आकाशवाणी

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन व्यथित था। उन्होंने कहा कि इस्तीफा उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। त्यागपत्र में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। इस्तीफे के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सार्वजनिक जीवन विद्यार्थी कल्याण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी अथक सेवा और सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता तथा मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने आंदोलन वापस लेने की औपचारिक घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीजेपी के प्रतिनिधियों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने बताया कि आंदोलनकारियों की उचित मांगों को मान लिया गया है।
1: कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
0: मौके पर सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम अच्छी नीयत से आंदोलन वापसी का ऐलान करते हैं। सीजीपी के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर समेत सभी स्थानों से शांतिपूर्वक वापस लौटने की अपील भी की है।
2: The Congress Janata Party declares that the withdrawal capitulation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon time.
0: इधर वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया। कांग्रेस और राजद समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया था। बंद के मद्देनजर राज्य भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस दौरान सभी संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और क्विक रिस्पांस टीम तैनात रही। राजधानी पटना में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात थीं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिला मुख्यालयों में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ साथ कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 100 दिन आज पूरे हो गए। पटना के बीआईटी मेसरा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याओं को बड़े पैमाने पर निपटाया जा रहा है।
3: अभी तक

0: लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 90% आवेदन हमारे निष्पादित किए जा चुके। लेकिन जब पहला नोटिस देने की बारी आई तो हमको मात्र 9000 लोगों को नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस अभी तक 350 लोगों को देना पड़ा और पिछले महीने का जो रिपोर्ट है, तीसरा नोटिस अभी तक मात्र 4 लोगों को देना पड़ा। 30 दिन किसी ने पार नहीं किया।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11,464 करोड़ रुपए की लागत की 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया। इन योजनाओं से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिखाए मार्ग पर ही सरकार राज्य को आगे ले जाने का कार्य कर रही है।
2: इस सरकार का जो मूल मकसद और मूल उद्देश्य है वो है निरंतरता के साथ विकास के नए आयाम जोड़ते जाना।
1: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने इन 100 दिनों में साफ नियत और स्पष्ट नीति के माध्यम से प्रगति के नए आयाम तय किए हैं।
3: बिहार सरकार ने इन 100 दिनों में यह सिद्ध कर दिया है कि यदि नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और नेतृत्व दृढ़ हो तो विकास की गति निरंतर बनी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने विकसित भारत और समृद्ध बिहार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है।
1: कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के कई सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इधर हमारे जिलों से संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न स्थानों पर 100 दिन पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने आज पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार सरकार राज्यवासियों को आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार स्वास्थ्य संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ बना रही है।
4: आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने 400 बेड के नए LNAJP का यूनिट का उद्घाटन किया है। जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। उन्हें लगभग 42 ICU बेड हैं, 6 OT हैं और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है के रूप में डेवलप किया गया है। आधुनिक रेडियोलॉजी की व्यवस्था है जिसमें CT स्कैन, MRI सब है, तो इसे और बेहतर चिकित्सा उपचार मतलब इसे बेहतर सुविधा हम दे सकेंगे मरीजों को।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वेटनरी कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत AC और नॉन AC बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwani at 90.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा

0: करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा, राजद और जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में एनडीए की ओर से मंदिरी क्षेत्र के काठपुल इलाके में जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत तय है। सभा को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री रामकृपाल यादव समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। इधर राजद और जनसुराज के प्रत्याशियों ने भी सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
1: दिनांक 26 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे अधिक 53.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के झंडू कुमार ने भारत को पहला पदक दिलाकर पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना दिया है। झंडू ने पैरा पावर लिफ्टिंग की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। झंडू कुमार नालंदा के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीट झंडू कुमार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास एक यात्री बस और टैंक लॉरी की टक्कर में बस पर सवार 22 लोग घायल हो गए। लखीसराय जिला समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बसेरा 2 अभियान के तहत 10 चयनित लाभुकों को भूमि का पर्चा प्रदान किया गया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आज माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। सुपौल के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन ने टीबी मरीजों के बीच पोषण सामग्रियों का वितरण किया। बांका के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर आज कांवरिया पथ पर बाल मजदूरी उन्मूलन अभियान के तहत छापेमारी की गई। इस दौरान विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों, ढाबा और होटल का निरीक्षण किया गया। जहानाबाद के घोसी प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। स्थानीय विधायक ऋतुराज कुमार ने इस विधानसभा क्षेत्र में 10 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आगामी सत्र के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के महाराजगंज स्थित एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित किए गए उर्वरक को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने विभिन्न मामलों में अभियुक्त 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई है। मादक पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे

0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
3: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
1: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। नालंदा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
9: नालंदा जिले में मॉनसून की सक्रियता के कारण लगातार हो रही संतोषजनक बारिश से धान की रोपनी के कार्य में तेजी आई है। जिले में अब तक लगभग 54% धान की रोपनी का कार्य पूरा हो चुका है। कृषि विभाग ने कहा है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले दिनों में रोपनी का कार्य और तेज गति से पूरा होगा। अच्छी बारिश के बाद किसानों में भी उत्साह है। आस्था, अध्यात्म और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में प्रसिद्ध राजगीर के प्राचीन गर्म जल कुंडों पर अब अस्तित्व का गंभीर संकट मंडराने लगा है। कभी निरंतर प्रवाहित रहने वाले अनेक प्राकृतिक गर्म जल कुंडों के जल स्रोत एक एक कर सूखते जा रहे हैं। गंगा, जमुना, अनंत ऋषि, ब्यास, मार्कंड ऋषि और गोदावरी जैसे कुंडों के जल स्रोत पहले ही सूख चुके हैं। अब विश्वविख्यात सप्त ऋषि कुंड भी सूखने के कगार पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक जल धाराओं का समाप्त होना केवल मौसमी बदलाव का परिणाम नहीं हो सकता, इसके पीछे भूगर्भीय परिवर्तन, जल स्रोतों पर बढ़ता दबाव, अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण, भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन, जल निकासी के प्राकृतिक मार्गों में बाधा तथा पर्यावरणीय असंतुलन जैसे कई कारण हो सकते हैं। बीते दिनों ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने भी राजगीर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले ब्रह्मकुंड क्षेत्र का निरीक्षण कर सूखते कुंडों और घटते गर्म जल स्रोतों पर गहरी चिंता जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कुंडों और झरनों की स्थिति का भी जायजा लिया। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त ने बीते दिनों नालंदा स्थित वेन सांग स्मारक परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने उनका स्वागत करते हुए प्राचीन नालंदा की प्रतिकृति मुहर भेंट की। राज्यपाल ने स्मारक परिसर में प्रदर्शित ऐतिहासिक धरोहरों, दुर्लभ चित्रों, हेनसोंग की अस्थि संग्रहालय,

0: तथा अन्य प्रदर्शनों का अवलोकन किया। उन्होंने बौद्ध अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा और नालंदा की गौरवशाली अकादमिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाविहार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बिहार के उभरते तैराकों के लिए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से 25 एवं 26 जुलाई को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अत्याधुनिक स्विमिंग पूल में 42वीं सब जूनियर एवं 52वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2026 के लिए बिहार राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यह ओपन चयन ट्रायल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी पात्र और इच्छुक तैराक भाग ले सकते हैं। चयन के लिए ट्रायल राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिनों तक चलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय और पर्यटन विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में विरासत और पर्यटन क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए 5 दिवसीय विरासत पर्यटन प्रबंधन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इच्छुक प्रतिभागियों से ऑनलाइन पंजीकरण आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन आज से 29 जुलाई तक नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गया है। नालंदा जिले में बीते दिनों आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के महापर्व श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का भव्य शुभारंभ राजगीर में हुआ। इसे लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजगीर पहुँचे। महोत्सव के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ, बड़े भाई श्री बलभद्र और बहन माता सुभद्रा की दिव्य प्रतिमाओं से सुसज्जित भव्य रथ यात्रा निकाली गई।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल। नालंदा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।

0: गिरफ्तार आरोपियों में एक नाइजीरियाई महिला भी शामिल है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 19,70,000 की नशीली गोलियां बरामद की हैं, जिनका कुल वजन लगभग 470 किलोग्राम है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक फैला हुआ है। दोनों मामलों में जाँच जारी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध
2: अलका याग्निक भी इसी तरह की बीमारी की
1: गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साफ तौर पर उन वायरल सोशल मीडिया अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली जिले में ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि जानकारी तथ्यों के आधार पर गलत और गुमराह करने वाली है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारी भीड़ और
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती
4: योजना का मामला उठाया। सदस्यों ने कम से कम 6 करोड़ विधायक निधि किए जाने की मांग की। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधायक निधि बढ़ाने का अधिकार वित्त विभाग और सरकार को है। दूसरी पाली में विधानसभा में 7 विधेयकों पर चर्चा के बाद मुहर लगी। इनमें बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन

विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए सब परिवर्तन निरसन विधेयक 2026 शामिल हैं। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही मिलीजुली रही। सभा की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के कुमार सर्वजीत ने राज्य में सूखे का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिलाधिकारियों को बारिश और सूखे की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जहां भी सुखाड़ की स्थिति होगी सरकार तुरंत डीजल अनुदान देगी। दूसरी पाली में राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण कानून को और सख्त बनाते हुए संगठित अपराध और भूमि माफियाओं को भी इसके दायरे में लाया है। इसे लेकर विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इसके तहत पेपर लीक से संबंधित गिरोहों, विस्फोटक पदार्थ, किसी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल करना, सरकारी संपत्ति के व्यापक नुकसान और वन क्षेत्र के उत्पाद एवं वन्य जीवों के व्यापक नुकसान जैसे मामलों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पटना में बुधवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव ने कहा कि बुधवार को डाकबंगला चौराहे पर उन पर हमला हुआ और हमलावर कोई छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे। विपक्षी सदस्य ने इसका विरोध किया। हाथापाई की स्थिति भाप मार्शल दौड़कर आए और सदस्यों को उलझने से रोका। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार मानती है कि छात्रों को आंदोलन करने का हक है, पर इस आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों को इसमें प्रवेश कर किसी पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे हमलावरों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पुलिस प्रशासन छात्रों पर गोली चला रही है। वहीं सत्ताधारी दल के सदस्यों ने कहा कि आंदोलन में असामाजिक तत्व शामिल हैं जो आम लोगों के साथ ही मीडिया कर्मियों को भी पीट रहे हैं। दोनों पक्ष से हो हंगामा शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्य वेल में आ गए। हंगामा बढ़ता देख सभाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने 5 मिनट बाद ही सभा की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में सप्ताह भर की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार। मानसून सत्र में विधान परिषद का 213वां सत्र खूब हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस सत्र में 5 बैठकें हुई। शिक्षा से लेकर पंचायत तक के मामले उठाए गए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही शिक्षा मंत्री को घेरा, शिक्षकों के मुद्दे उठाए। इस सत्र में 21 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली। सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों, छात्र आंदोलन और नीट विवाद पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे जोरदार ढंग से उठाए। राजद के विधान पार्षदों ने छात्र आंदोलन और नीट मामले को लेकर सदन में प्रदर्शन किया। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया। पूरे सत्र के दौरान सदस्यों ने प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और निवेदन के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों को सरकार के सामने रखा। सरकार ने कई सवालों के जवाब सदन में दिए, जबकि बाकी मामलों को संबंधित विभागों और समितियों के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया। 5 दिनों के सत्र के प्रथम दिन सोमवार को सदन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत को विधान परिषद के सभी सदस्यों ने उनके जन्मदिन की बधाई दी। बतौर विधान पार्षद वे पहली बार सदन में आए थे। परिषद की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। अपने प्रारंभिक संबोधन में सभापति ने सीएम सम्राट चौधरी को बधाई दी, साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी याद किया। सदन में 12 नव निर्वाचित सदस्य भी मौजूद थे। जन्मदिन की बधाई मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने सबके प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि हमें मिलकर काम करना है। मंगलवार को विधान परिषद की दूसरी पाली में राजद एमएलसी अशोक पांडे के गैर सरकारी संकल्प का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों को रेल यात्रा में रियायत दोबारा शुरू करने की सिफारिश भारत सरकार से करेगी। बुधवार को विधान परिषद की पहली पाली में भाजपा के नवल किशोर यादव और राजद के सुनील सिंह आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के लिए संसदीय भाषा का प्रयोग किया। बुधवार को विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होती ही राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। इस मुद्दे पर पक्ष के लोग सुरक्षा की मांग कर रहे थे। निर्दलीय महेश्वर सिंह और भाजपा के घनश्याम ठाकुर ने भी सुरक्षा की मांग को इस पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मामले की तह तक जाकर जांच की जाएगी। इसके पहले सदन पटल पर प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24

0: इसके निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन में रखी गई। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा से जुड़े सवाल अधिक किए गए। अभी आप विधानमंडल में सप्ताह भर की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार
1: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में
2: प्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
3: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन किसी अच्छे फनकार में ये खूबी होती है कि वो न सिर्फ जहनी और कलबी कैफियतों को समझता है और महसूस करता है, बल्कि जो कुछ लोगों पर गुजरती है उसका अपनी तख्लीकी काविश से बरमला इजहार भी करता है। शायरी के हवाले से अगर बात की जाए तो शायर जहनी और कलबी कैफियत को जो महसूस करता है

हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट

पर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तिन्नेट्टी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तिन्नेट्टी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख

बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्य

0: हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी हमारे श्रोता संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 8:15 होने वाले हैं। सुनते हैं फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर बुधवार प्रातः 11 से 12 बजे के बीच होती है। आप भी अपने मनपसंद गाने को सुन सकते हैं बस एक फोन करके। हमारा फोन नंबर है 06-184-221130। फोन एक बार फिर सुन लें, 06-184-221130। तो ये सुनिए फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आप भी अपने मनपसंद गाने को सुन सकते हैं, बस करना है एक फोन। हमारा फोन नंबर है 06184221130, 06184221130। हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद।
0: बोलिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: के नीचे और जेल के पीछे एक बसंतपुर बस्ती है सर।
0: हाँ हाँ, बसंतपुर देख रहे हैं हम भी, स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है सर आपका?
1: जमुना चौधरी नाम पड़ेगा।
0: जमुना चौधरी जी, बोला जाए सर, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ सर, हमको दिल का क्या कसूर का।
0: दिल का क्या कसूर?
1: हाँ।
0: कौन सा गाना सर?
1: मिलने की तुम
0: कोशिश करना,
1: करना वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है।
0: आपकी उम्र क्या होगी अभी?
1: 55
0: के उम्र में बचपन वाली ख्यालात रखते हैं सर, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो लीजिए सुनिए सर अपने मनपसंद का ये गीत फिल्म दिल का क्या कसूर से।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी रंगपुर पासवान खखड़ा से।
0: अच्छा अच्छा ये खखड़ा
1: रोहता से पड़ता है।
0: अच्छा रोहता। जी जी बोलिए सर, आपने फोन किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र।
1: जी
0: जी गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जी दुनिया में इतना गम है।
0: दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है।
1: जी
0: चलिए, फिल्म के नाम याद है सर?
1: नाम तो नहीं याद है।
0: अच्छा ठीक है, नाम नहीं है तो आपको सुनवाए जाएंगे जरूर आपके मनपसंद का यह गीत।

अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। शाम के 8:30 होने वाले हैं। अगली प्रसारण विविध भारती से थोड़ी देर में, कार्यक्रम आज के फनकार।

0: अब हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच गया। पहले आप सबों का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन कि आपने बहुत सारे फोन कॉल किए और जिज्ञासा व्यक्त की और सारे जिज्ञासाओं का समाधान किया गया, चाहे वो सुल्तानगंज पटना हो, बिदुपुर बाजार हो या आदमपुर भागलपुर हो, सहरसा हो, राजापाकर हो, पूरे बिहार से फोन कॉल्स आए हैं। अच्छा लग रहा है। हालांकि जितने फोन कॉल की हमने उम्मीद की है उतने नहीं आए, लेकिन फोन कॉल्स आए, अच्छा लगा। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। और खास करके जब आपने BCA और BBA के बारे में जानकारी ली और ये कार्यक्रम हम जिनके तरफ से लेकर आते हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, उसके विषय में भी जानकारियां लिए। कुछ फोन कॉल ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि हमने फोन पर बात किया, अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने वहां पढ़ रहे युवाओं से बातचीत की, उनसे बातचीत के अंश सुनवाए, जिससे कि हमें कंसेप्ट बनाने में, हमें कॉलेज के विषय में जानकारी एकत्रित करने में आसानी मिली। कुछ ने कहा वेबसाइट पर भी गए। हाँ, जानकर अच्छा लगा कि सगुना मोड़ पटना में और राजेंद्र नगर पटना में आर्किड बिजनेस कॉलेज है और जो 27 वर्षों से लगातार BCA और BBA को लेकर काम कर रहा है। और प्लेसमेंट के विषय में भी जानकर अच्छा लगा कि दसियों कंपनी आती है जहां की बच्चे युवा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बहरहाल, हम आपसे कहना चाहेंगे कि राजेश आपके लिए जो कार्यक्रम लेकर आता है उसे ठोक बजा कर देखता है पहले, फिर आप तक बातें पहुंचाता है। उड़ान उड़ान आज इस साल सिर्फ नहीं, पिछले वर्षों से हम आपके लिए इसी समय ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। अगर आप भी BCA और BBA करना चाहते हैं तो नंबर नोट करें 7520800 ये नंबर है आर्किड बिजनेस कॉलेज का। एक बार जरूर बात कर लेंगे, जानकारियां ले लेंगे। हाँ, सगुना मोड़ पटना और आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर पटना में ये संस्थान है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम कहते हैं कि संस्थान का चुनाव करते वक्त ये जरूर देखिए कि संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है, तो आर्किड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एकमात्र BCA और BBA के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखनी चाहिए, उसके बाद आपको फैकल्टीज का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद जो है पढ़ाई के बाद ये लोग प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, कोई असिस्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे आर्किड बिजनेस कॉलेज में 100% असिस्टेंस है, आप उनकी मदद ले सकते हैं। बहरहाल, स्थायी मान्यता प्राप्त वाले संस्थानों में अकेला खड़ा है आर्किड बिजनेस कॉलेज, जिससे क्या होता है,
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
2: चलिए, आज भी हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे ली गई बातचीत हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आर्किड के विषय में आपको विचार बनाने में कि जाएं ना जाएं बहुत मदद मिलेगी या अच्छा संस्थान चुनने में मदद मिलेगी। हम तो ये कभी नहीं कहते कि आप आइए और एडमिशन ले लीजिए, ना ना ना, कभी नहीं, क्योंकि ये जीवन का सवाल है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो गुजरा हुआ वक्त है ना, वो फिर से नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए आप पूरे एपिसोड में देखिएगा, राजेश कहता है BCA और BBA की पढ़ाई कहां से पढ़नी है, क्या करनी है, ये कुछ भी नहीं कहते। सिर्फ हम थैंक यू कहते हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ को कि इतना अच्छा कार्यक्रम इस साल भी हमें आप सबों तक पहुँचाने का मौका दिया।
6: सर, मेरा नाम रिया राज है, अभी मैं BCA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। सर, BCA मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, मतलब

0: कंप्यूटर में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एआई वगैरह को जानने में, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरी मशीन्स वगैरह को जानने में, इसको एक्सप्लोर करने में, कोडिंग वगैरह को सीखने में, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था।
1: क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बीसीए कर लेंगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी?
0: हाँ ज़रूर, मैं जॉब ही लेना चाहती हूँ टेक कंपनी में, और यहाँ बहुत ऐसा मतलब आते रहता है अपॉर्चुनिटी। यहाँ का दावा है आर्केड बिजनेस कॉलेज का, हर दूसरे बच्चे को यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट मिलेगा, और हमारे टीचर जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ये हर दूसरा बच्चा नहीं, हर बच्चे को यहाँ मिल पाए प्लेसमेंट।
1: आर्केड बिजनेस कॉलेज से आपने बीसीए करने के लिए क्यों चुना?
0: आर्केड बिजनेस कॉलेज वैसे मुझे तो रिकमेंडेशन मिला था मेरे एक फ्रेंड से जो अभी सीनियर थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की बहुत अच्छी फैकल्टी है, सब बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, फिर मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद यहाँ की फैकल्टी से इंट्रोडक्शन हुआ हम लोग का, उसके बाद यहाँ के सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। यहाँ मतलब ट्राई किया जाता है कि बच्चे को पुश किया जाए उस चीज़ में। अब ये तो हमारे पे निर्भर करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा जॉब, अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिना पढ़े ही सब कुछ मिल जाए।
1: वाह, कितनी अच्छी बात आपने की कि अगर रोजगार चाहिए तो आपको भी मेहनत करनी होगी। आपके साथ फैकल्टी लगे होंगे, पूरा इंस्टीट्यूशन लगा होगा, लेकिन आपको भी कोशिश करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। ये सिर्फ आर्केड के बच्चे ही ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि एक माहौल है यहाँ पर। बहरहाल, अगर हम आपसे कहें कि पूरे बिहार में ये कार्यक्रम बज रहा है, उन बच्चों को मोटिवेट कीजिए जो घर में लोग बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? आर्केड बिजनेस कॉलेज, बीसीए, बीबीए, उनसे क्या बातें कहेंगी आप?
0: ये अपॉर्चुनिटीज है, ये बैठ के सोचने से कुछ होगा नहीं। अब आप अपने आप को जितना इग्नोर करते रहोगे उतना आप मतलब गड्ढे में गिरते जाओगे, क्योंकि एटलीस्ट सबको पता है कि पटना में, बिहार में और पूरे भारत में पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग अपने फ्यूचर के खिलाफ एक स्टेप नहीं लेंगे तो हम और भी गिरते चले जाएंगे और उस लाइन में चले जाएंगे जहां हमसे कोई कभी नहीं पूछेगा। तो अभी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, तो लेना ही चाहिए एडमिशन सबको।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि आपकी एक सीनियर थी जिसने आर्केड को रिकमेंड किया कि आप यहाँ आ जाओ, एडमिशन ले लो, है ना? तो जब आपने एडमिशन ले लिया तो अब क्या सोचती हैं आर्केड के बारे में, प्लेसमेंट, क्लासेज या फैकल्टी, इन चीजों के बारे में चलते चलते बताइए।
0: आर्केड बहुत सहयोग कर रहा है क्योंकि ये लोग सारे कंपनीज लगभग लाते ही रहते हैं हम लोग के लिए। यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं सब कोई। अब ऐसा तो नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी लापरवाही वगैरह भी कुछ नहीं है। इवेंट्स वगैरह में भी ले जाया जाता है और ऐसे ऐसे इवेंट्स में ले जाया जाता है जिससे हम लोग का मतलब लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उन इवेंट्स के कारण उनका कॉन्फिडेंस भी खुलता है। तो और क्या ही चाहिए,
1: ये संतुष्टि है स्टूडेंट का अपने इंस्टीट्यूशन से, जो बहुत बड़ी बात है। और राजेश हमेशा यही चाहता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाई करें। पैसा तो लगेगा, हाँ समय भी लगेगा, तो हम रिजल्ट की क्यों नहीं उम्मीद करें? और बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संस्थान अगर मेहनत कर रहा है तो। उड़ान कार्यक्रम चल रहा है लगातार, वर्षों से इसी समय हम आते हैं और बीसीए और बीबीए को प्रमोट करते हैं, बताते हैं बच्चों को कि ये कोर्स बहुत ही वाइब्रेंट है, रोजगार मिल जाता है। और 27 वर्षों से जो संस्थान लगा है बीसीए और बीबीए के साथ, वो है आर्केड बिजनेस कॉलेज। हम उसकी मदद लेते हैं ये सारी बातें आप तक पहुंचाने के लिए। और आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर पटना में है, सगुना मोड़ पटना में है, दोनों जगह है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। बहरहाल, एक नंबर बताते हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं, 7520808000। और अब सुनिए ये क्या कह रही हैं।
2: जी मेरा नाम मंशा नौशाद है जी, मैं पटना कुम्हरार की रहने वाली हूँ जी। मैं यहाँ करेंटली बीसीए सेकेंड ईयर में हूँ आर्केड बिजनेस कॉलेज से जी। ऐसे तो मेरा कोई चांसेस टेक फील्ड में आने का नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे बोले कि तुमको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम टेक फील्ड में जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा था। और मैं स्टार्टिंग से बचपन से बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुम ये फील्ड परस्यू करो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा।
1: और आर्केड बिजनेस कॉलेज का चुनाव किसकी देन थी?
2: तो बेसिकली ये मेरी सिस्टर का प्लान था कि उसने बहुत जगह रिसर्च किया और आर्केड उसको बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था, मेरे लिए मेरी सिस्टर मेरी गार्डियन है और वो उसको

0: ही बेटर लगा था कि वो बोले कि अभी जितना भी पटना में फैकल्टीज है उसमें सबसे बेटर आर्केड बिजनेस कॉलेज इंस्टीट्यूट है, तो तुम वहाँ जाके अपना BCA परस्यू करो। और यहाँ आके मैंने पाया कि मेरी सिस्टर बिल्कुल सही थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, फैकल्टीज सारे बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मिलता है, हम लोग को एजुकेशन बहुत अच्छा है यहाँ का। एंड जॉब्स के लिए भी यहाँ बहुत सारी कंपनीज आते रहते हैं, विपिन ने देखा भी है बहुत सारे सीनियर्स के जॉब लगे हैं। बस यही होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपकी जॉब अच्छी लगेगी, आप अगर पढ़िएगा ही नहीं तो जॉब की क्या, उसमें फैकल्टीज भी कुछ नहीं कर पाते हैं, मेन तो हमें ही पढ़ना पड़ता है।
1: तो आपको तो आपकी दीदी ने गाइड कर दिया और अब आपके फैकल्टी आपको गाइड कर रहे हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज में। अगर जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर हम कहें कि आप गाइड कीजिए उन्हें, तो आप क्या कहिएगा?
0: तो बेसिकली मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपका किसी और फील्ड में मन है तो वहाँ जाइए, और अगर नहीं, और अगर आपको कंप्यूटर टेक के फील्ड में जाना है तो BCA बेटर ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अभी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और आप लोग देख भी रहे हैं रोबोटिक्स एनालिटिक्स बहुत सारे जॉब ऑप्शन खुल रहे हैं। आप लोग को, हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो AI को कोई चला सकता है, हमें रोबोट्स नहीं ना हायर करना है, हमें AI को चलाने वाला चाहिए। तो हम लोग अगर BCA करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे करियर ऑप्शन खुलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि BCA करो, और अगर पटना से हो तो प्लीज आर्केड में एडमिशन ले लो।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
1: तो सुना आपने स्टूडेंट्स को, है ना, स्थायी मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्था ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आर्केड बिजनेस कॉलेज। कहते हैं कि स्टूडेंट आईना होता है किसी भी संस्थान का। इन बच्चों का कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ड्यू टू आर्केड बिजनेस कॉलेज। फैकल्टी अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अच्छी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाने के लिए टीचर्स अच्छे, इसके अलावा इवेंट्स में ले जाना, जॉब के लिए कंपनीज को बुलाना, माय गॉड क्या चाहिए। और हम बार बार फिर भी कहते हैं, सुनी सुनाई बात पर नहीं, आकर देखना होगा। R&D कीजिए, सर्च कीजिए, वेबसाइट पर जाइए BCA और BBA और कॉलेज को, और उसमें आर्केड बिजनेस कॉलेज। जितने लोगों ने भी हमसे बातें की इधर के लगातार एपिसोड में, आप सबने सुना है, तो आप डायल कर सकते हैं नंबर 7520800800, 7520800800, आर्केड बिजनेस कॉलेज का। हम आशीष आदर्श जी, जो डायरेक्टर हैं इस संस्थान के, उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि माता पिता का कितना रोल होगा बच्चों के करियर डिसीजन में?
4: देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स से बेहतर करियर काउंसलर्स और कोई नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो अपने बच्चों के सारी लिमिटेशंस को जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने बच्चे को वही ऑप्शन सेलेक्ट करने की छूट देनी चाहिए जो वो करना चाहता है। देखिए, हमेशा मान के चलिए कि एक थर्ड क्लास इंजीनियर से एक फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ज़्यादा बेहतर है। तो जो उसका फील्ड में, जिसमें वो जाना चाहता है, उसमें ज़रूर जाए, और उसके लिए पूरा जो पेरेंट्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए।
1: धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स से अच्छा अपने बच्चे को कोई भी नहीं समझ सकता। वो वही फील्ड चुनने दें जिसमें बचपन से उसे इंटरेस्ट उनको दिखाई दे रहा है। बहरहाल, चलने का वक्त हो गया, एक और उड़ान कार्यक्रम खत्म होना चाहता है। हम बातें जारी रखेंगे आने वाले एपिसोड में भी, लेकिन चलते चलते दो बातें स्टूडेंट से जरूर कहना चाहते हैं। फैंटेसी में नहीं जाइए, दिखावे में नहीं जाइए, है ना, सही से। जैसे एक बार आशीष जी ने भी कहा था कि हर इंस्टीट्यूशन अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताता है, इसलिए सच्चाई देखनी चाहिए। दो तीन चीजें जरूर देखिएगा कि मान्यता स्थायी है या अस्थायी, इसके अलावा फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है, कितना आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल रहा है, और गारंटी कहा, आधुनिकता के दौर में गारंटी की उम्मीद करना बिल्कुल नहीं। बहरहाल, जरूर बात कर लीजिएगा। ये नंबर है आर्किड बिजनेस कॉलेज का, 7520800800, 7520800800। तो बस आज का सफर यहीं तक, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा

0: से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके

0: और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण बेस के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: स्वागत है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बज चुके हैं। सुनते हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं मनोरंजन ओझा की आवाज़ में एक खूबसूरत सा भोजपुरी लोकगीत।

अभी आपने सुना मनोरंजन ओझा को कार्यक्रम लोकधारा में। इसी गीत के साथ भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा भी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बज चुके हैं, माफ कीजिएगा 9:15 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम महफिल, इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ गज़लें। पहले सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गज़ल, कौशर उर जाफरी ने इसे लिखा है और अनूप जलोटा ने संगीत दिया है। एल्बम है कशिश।

अब हम सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज़ में खूबसूरत सा गज़ल। इश्क अम्बलवी के लिखे इस गीत को भूपेंद्र सिंह ने संगीत दिया है, गाया है मिताली सिंह ने, और एल्बम है गज़ल के फूल।

अब हम सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में मेहदी हसन को। साहिल मदानी के लिखे इस गीत को ललित सेन ने संगीत दिया है और एल्बम है मेहदी हसन लीजेंड।

0: मेहदी हसन के गाए इसी गज़ल के साथ ही गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं, सुनते हैं बेबी भारती के कार्यक्रम आज।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पल।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।

0: दिक्कत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपिनियन कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी।

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: देखो,
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थी। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया।

फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जीएस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूख कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब।

है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है।

जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जी एस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जी एस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जी एस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जी एस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। सुनते हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम रसरंग की पहली पेशकश कैलाश खेर की आवाज में, जमुना प्रसाद द्विवेदी गंगवार ने इसे लिखा है, प्रशांत महावल ने संगीत दिया है और एल्बम है देश पर जान लुटा देंगे।

कार्यक्रम की अगली पेशकश अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा की आवाज में। मिर्जा गालिब ने इस गीत को लिखा है और निहारिका सिन्हा ने संगीत दिया है। एल्बम है हजारों ख्वाहिशें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब हम सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश स्टेबिन बीन की आवाज में। गीत और संगीत रशीद खान का है, एल्बम है सावन की बूंदें।

अखिलेश कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग भी यहीं संपन्न होता है। गीत और संगीत अखिलेश कुमार का ही था और एल्बम था मदमस्त नैना। अब हम सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने में। कार्यक्रम का पहला गाना अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है, फिल्म है आरजू।

अभी आपने सुना आरजू फिल्म का ये गाना अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फरीद साबरी, हरिहरन और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म है बरसात की रात।

कार्यक्रम चित्र पढ़ते रहने के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना जसपिंदर नरुल्ला, अमीन सावरी और फरीद की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है और फिल्म है सिर्फ तुम।

अमीन सावरी, फरीद और जसपिंदर नूरुल्ला के गाए इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:59 हुए हैं। अब हम सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार थोड़ी देर में। हिंदी समाचार के तुरंत बाद सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को

0: शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।